0: कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने के प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।
1: ये था आज का नीति वचन। नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:56 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं उद्घोषक गदो अत आकाशवाणी के ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज सन 2024 के जुलाई महीने की 22 तारीख है और दिन है बुधवार। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक तीतांगजांग तथा तकनीकी अभियंता बी बोरा। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए हम जानते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर में 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 6:05 पर आप सुन पाएंगे इंग्लिश न्यूज। 6:10 पर आप सुन पाएंगे धोनी पोलो भक्ति गीत। 6:20 पर आप सुन पाएंगे मोनपा श्रोताओं का कार्यक्रम। साजोलांग श्रोताओं का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 6:30 पर। 6:35 पर आप सुन पाएंगे रूसो श्रोताओं का कार्यक्रम। पर आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। आपतनी भाई बहनों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:10 पर। 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम।

सुबह के ठीक 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज। आप सुन पाएंगे 8:15 पर। शिलांग केंद्र से प्रसारित नोटिस न्यूज आप सुन पाएंगे 8:30 पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ईटानगर हम लेकर आएंगे 8:40 पर। स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम हेल्थ हिंट्स आप सुन पाएंगे 8:50 पर। सभा के अंत में सुबह के 9 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराना। जी हाँ दोस्तों, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए आप आपके रेडियो साथी गदो के साथ बने रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार

0: Of the opening round of the China Open 2026 in Changzhou yesterday after being outplayed by Long Jun Hao of Malaysia. The Indian shuttler lost 21-10, 21-14 to the world number 27. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं ताबा काकू और साथियों के आवाजों में भक्ति गीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे ताबा काकू और साथियों की आवाज में दोनी पोलो भक्ति गीत। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं मोनपा श्रोताओं का कार्यक्रम।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे मोनपा श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं साजोलांग श्रोताओं का कार्यक्रम।

India North Miss Dunia lagabe ITEC training slots emsin double more esko fellow president Gordona Sil Janowska Davkovane agom jabrik jirobe media lo main kenjila des aniga pele lo regional ok global issues lo bilateral cooperation doje ok menam sangnam biusem share minjijam chin alive katwa ela murmu men fajitu ओके इंडिया ला नॉर्थ मिस दुनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एम अतरूब प्रमोट रिगदूला कब सेक्टर्स आईटी एंड आईटी एनेबल सर्विस एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग फार्मास्यूटिकल्स टेक्सटाइल बायोटेक्नोलॉजी टूरिज्म हॉस्पिटलिटी ओके फिल्म मेकिंग लोचिन अगर रुबाम जम तोरिक जिका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एम रो जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉक फाइलोट पेस एम लॉन्च रिजिला जिगी ग्रासरोट लोक डिजिटल क्रिएटर्स एम आइडेंटिफाइला नार्सर ओक प्रमोट द नेशन वाइड इनिशिएटिव गो चैलेंज वेब्स ओटीटी आरालो माय वेब्स प्लेटफॉर्म गो मोतु जोगो सिटीजन एम शॉर्ट वीडियो मोला आइगे डिस्ट्रिक्ट लोक यूनिंग ने दोयलुमा ओक कल्चरल हेरिटेज एम मोला कातम दबे तोमतु पार्टिसिपेट देन 1-3 मिनट्स ने वीडियो लोक मोगरेला माय वेब्स सेक्शन लोक वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म लो अगस्त 1 तारीख लोग के तार्टी लोबे जिलुक दोबे मेन टू पायलट पेस अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड अरुणाचल प्रदेश चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली दामन एंड दीव गोवा ओके लद्दाख एम कोबार रे जोगो वीडियो मोलाग ने क्रिएटर्स एम डिस्ट्रिक्ट लेवल लो 50,000 बे आकेन एम एवार्ड जिरे स्टेट लेवल एम 2 लेक्स बे ओके नेशनल लेवल लोग एम 5 लेक्स बे मुर्को जिरे होम मिनिस्टर मामा नातुंग मेरो अन्या अनसुलोक रिप्रेजेंटेटिव एम नेरिस्ट गे इसुलो कंसल्टेटिव कबा गो दुगे तो कबा नेरिस्ट लगा बन यूनियन गे मैदिक मोजिक ला जाबना मेम दुरुग जिला अगोम बे अल जाबे जामिन लामिन जिमदो बे अल ने समोयम जितु इटानगर लो केनलो लोन आलो ओगो यूथ रेले दूले देने गादगे रेगो दुगो एम आदेग मकुनाम लो दिनची दूला पीसफुल रैली गो स्टेट गा यूथ्स रिगतो रैली एम 11 AM लो आकाशदीप लोक इनरोब नगे आईजी पार्क लो इनकुमला ओगो ओमे ओरो गादगे रेगो दुगो लेगाबे मेदुम सागदुम ने आने आबो यूथ्स ओके स्टूडेंट आकुमला किचन कुमा दबे आईजी पार्क लो युकुम तो आलो लो मुनु देश गा एजुकेशन सिस्टम एम रिफॉर्म्स लानाम लगाबे तोड़ुगारगम रिबाम तु मेन के नागम सिमनुन आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन लोक के तफादु स्पेशल इंटेंसिव रिवाइजन SIR आरालो इलेक्टोरल रोल रिगदु नामलो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ग सिडुल नोटिफाई जी नामलो तावांग डिस्ट्रिक्ट ग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आउम 1 लुमला ST 2 तावांग ST ओके 3 मुक्तो ST लगाबे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स एमरो पब्लिश रिका पब्लिक इंस्पेक्शन लगावे ड्राफ्ट ई रोल्स डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीओ ऑफिस लो कंसर्न इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स EROs असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स AROs ओक BLO लो अवेलेबल बे दोदु ड्राफ्ट रोल्स मोकोलोक तावंग डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी आउम लोक इलेक्टर्स 25,512 को कादु ओके 12,227 यामे ओके 13,285 ओमेनी में बे रुदु तावांग डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मेरो फार्मर गे रुकनाम एम आलियाया मोला ओके मुर्को इनकम एम पावेन मोनाम लगावे कादुला दोनी लोकेन मशरूम कल्टिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम गो रिगका सरकार गे मशरूम मिशन इनिशिएटिव लोक प्रोग्राम रिगकोलो फार्मर्स चामगोला कोनागोबे केटपेल ब्लॉक लोक के ट्रेनिंग एम पार्टिसिपेट न्यातु रेलिग्नम एड्रेस दूला डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कोंचो ग्यात्सोम मशरूम लीनम लगे लगा एम जाबजी दूला जिलो मेरोगे साइंटिफिक कल्टिवेशन रिनाम एम अलजाब एडोप तोका एला तमसिरतु कारगिल विजय दिवस एम फादुकुला डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कारगिल विजय दिवस रेन रन 2026 एम आईजी पार्क ईटानगर लो देवबारोगो लो दुंगका डीसीएम सोनामेन सोशल मीडिया पोस्ट लो नारू एम सिपाही निरेक
যকেক আগে জীবনে।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों, अक्सर जब हम योगा या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वही पुराने आसन और स्ट्रेचेस हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन आज हम कुछ बिल्कुल अलग करेंगे। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप घंटों मुश्किल आसन करें या हैवी वेट उठाए। सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद असरदार एक्सरसाइज की, जिसे कहते हैं कैट काउ मोबिलिटी स्ट्रेच। अगर सुबह उठते ही आपकी पीठ या कमर में जकड़न लगती है तो जमीन पर दोनों हाथ और घुटने टिकाकर बैठ जाइए और अपनी पीठ को ऊपर नीचे मूव कीजिए। ये आपकी स्पाइन को मक्खन जैसा लचीला बना देता है। इसके साथ ही आप खड़े खड़े 2 मिनट के लिए स्पॉट मार्चिंग या जॉगिंग कर सकते हैं। ये बिना घर से बाहर गए आपकी हार्ट रेट को पंप करता है और सुबह का आलस बिल्कुल गायब कर देता है। अब आते हैं हमारे योगा सेगमेंट पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सूक्ष्म व्यायाम के बारे में सुना है? इसे हम माइक्रो एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। हमारे शरीर के एक छोटे छोटे जॉइंट्स जैसे हमारी उंगलियां, कलाइयां और गर्दन, इन्हें सुबह सुबह हल्का सा रोटेट करना हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अगर आप दिन भर कंप्यूटर पर बैठे हैं या खेती बाड़ी का काम करते हैं तो सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने जॉइंट्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को और एनर्जी को तुरंत बूस्टर देता है। और चलिए एक और कमाल की चीज बताती हूँ, त्रातक क्रिया, या इसे आई योगा भी कहते हैं। सुबह उठकर किसी एक चीज पर या सुबह के हल्का नजर सूरज पर बिना पलके झपकाए फोकस करिए जब तक आंखों में थोड़ा पानी ना आ जाए। आजकल स्क्रीन देख देख कर हमारी आंखें थक जाती है और ये सिंपल सी प्रैक्टिस आपकी आईसाइट और फोकस दोनों को बेहतर बनाएगी। तो चलिए, इस यूजफुल टिप के बाद वक्त हो चला है एक और बेहद खूबसूरत गाने का।

दोस्तों आप हैं मेरे साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं होता, बल्कि अपने शरीर के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना होता है। आज का मेरा सबसे बड़ा हेल्थी पता है क्या है? वो है माइंडफुल वॉकिंग और सर्कैडियन रिदम, यानी प्रकृति के चक्रधार चलना। सुबह जब आप वर्क पर निकले तो अपने कानों में हेडफोन मत लगाइए, अपने आसपास की चिड़िया की चहचहाट सुनिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए, और हाँ अगर हो सके तो थोड़ी देर घास पर नंगे पैर चलिए, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को जमीन के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और आपको पूरे दिन के लिए काम और हैप्पी बनाता है। इसके साथ ही अपनी सुबह की शुरुआत किसी कोल्ड ड्रिंक या सीधे चाय से करने के बजाय हल्का गुनगुना पानी पीकर करें। ये आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। सेहत की इन प्यारी बातों के साथ अब वक्त हो चला है हमारे आज के अगले गीत के।

दोस्तों उम्मीद है आज के गाने और हमारे सेहत की बातें आपको पसंद आई होंगी। याद रखिए एक सेहतमंद शरीर में ही एक खुशहाल दिमाग बसता है। अपने लिए रोज सुबह थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए। अब आपसे विदा लेती हूँ, वक्त हो गया है, कल सुबह फिर मिलेंगे ठीक ऐसे वक्त इस स्टेशन पर लेकर अपने शो सुबह से लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम। दोस्तों कहीं मत जाएगा, अभी आप सुन पाएंगे आप अपनी श्रोताओं का कार्यक्रम या आकाशवाणी चैनल का अरुण FM 100।

अपने दैनिक में समाचार बुलेटिन आकाशवाणी ईटानगर पर यह वक्त है आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट का। उम्मीद है आपकी सुबह एकदम शानदार और ताजा तरीन होगी। आज तारीख है 22 जुलाई 2026 और जैसे कि हम नया दिन शुरू करते हैं ना दोस्तों, मुझे हमेशा लगता है कि हर नया दिन इतिहास के पन्नों में कुछ नया जोड़ने का एक मौका है। पर आज का ये दिन पहले से ही इतना अहम रहा है कि क्या बताऊं। चलिए सबसे पहले दुनिया के उस दौर में चलते हैं जहां कुछ लोगों ने ऐसी मिसालें कायम की जो आज भी हमें हैरान करती हैं। नजर डालते हैं ग्लोबल हिस्ट्री पर। दोस्तों अगर हम पूरी दुनिया के इतिहास के देखें तो आज का दिन जज्बे और बदलाव का दिन है। 1933 में वाइली पोस्ट नाम के एक अमेरिकन पायलट ने अकेले बिना किसी मदद के पूरी दुनिया का चक्कर काटने का पहला फ्लाइट रिकॉर्ड पूरा किया था। सोचिए दोस्तों उस दौर में जब ना कोई एडवांस जीपीएस था और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तब अकेले आसमान को नाप लेना सिर्फ 7 दिन और 18 घंटे में उन्होंने ये करिश्मा दिखाया। यह हमें सिखाता है कि अगर पक्का इरादा हो तो इंसान अकेले ही पूरी दुनिया बदल सकता है। 1944 में मशहूर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी। ये वही कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों जहां से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नींव रखी गई थी। यानी आज का दिन इस बात का गवाह है कि कैसे पूरी दुनिया ने आपस में जुड़कर एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत की थी। 1962 में नासा ने अपना पहला प्लैनेटरी प्रोग्राम मैरिनर 1 लॉन्च किया था वीनस प्लैनेट की तरफ। हालांकि कुछ ही सेकंड्स बाद टेक्निकल खराब की वजह से ये क्रैश हो गया था। पर पता है इससे क्या सीख मिलती है कि हर नाकामी की ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। अगर वो उस दिन क्रैश ना होते तो शायद आज स्पेस साइंस इतना आगे ना होता। दोस्तों 2003 में सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और ख्वेसे हुसैन इराक के मोसुल शहर में एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे। एक ऐसा दिन जिसने मिडल ईस्ट की पूरी सियासत और इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है ना। दिलचस्प की बात है। चलिए वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते हैं प्यारा सा गाना और उसके बाद लौटेंगे हमारे अपने प्यारे भारत के उस सुनहरे इतिहास पर जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा।

वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर पर आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इंफरटेनमेंट। मेरे साथ ग्लोबल हिस्ट्री के बाद चलिए आप लौटते हैं अपनी मिट्टी पर, हमारे अपने देश यानी इंडिया के इतिहास पर। आज 22 जुलाई के दिन भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो सीधे हमारे दिल को छूती है, आइए जानते हैं। 1947 में आज ही के दिन हिन्दुस्तान के लिए सबसे बड़ा और गर्व का दिन है दोस्तों, क्योंकि आज ही के दिन हमारे प्यारे तिरंगे को कंस्टिट्यूंट असेंबली ने ऑफिशियली इंडिया का नेशनल फ्लैग स्वीकार किया था। जब भी हम तिरंगा को लहराते हुए देखते हैं, हमारी आंखों में एक चमक और दिल में देशभक्ति जगती है ना, उसकी ऑफिशियल शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। सलाम है उन सभी नेताओं को जिन्होंने इस शान को चुना। 1969 में इंडिया ने स्पेस साइंस में एक नया चैप्टर शुरू किया था, जब देश का पहला सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन कावलूर तमिलनाडु में शुरू हुआ था। ये एक छोटा सा कदम था दोस्तों, लेकिन इसने आने वाले वक्त में हमारे स्पेस प्रोग्राम्स का रास्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया। 1981 में इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल जियोस्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसे एप्पल कहा जाता है, उसने अपना काम शुरू किया था। दोस्तों आज जो भी हम घर बैठे आसानी से टीवी देख पाते हैं, कम्युनिकेशन का मजा लेते हैं, उसकी एक मजबूत बुनियाद इस सैटेलाइट ने रखी थी। 2019 में इसरो ने फिर से इतिहास रचा था जब चंद्रयान 2 को चंद्रमा के सफर पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। हालांकि हमारे लैंडर उस वक्त टच डाउन नहीं कर पाए थे, पर हमारे साइंटिस्ट के हौसले ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम रुकने वालों में से नहीं हैं। अपने देश का इतिहास हमेशा से हमारी अंदर एक नई एनर्जी भर देता है। चलिए अब वक्त है हमारे दूसरे म्यूजिकल स्टॉप का, एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं और फिर बात करेंगे हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश के आज के न्यूज़पेपर की पूरी डिटेल्स के साथ।

दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे सबसे अहम सेगमेंट का, यानी अरुणाचल प्रदेश के आज के अखबारों से ताजा और पूरी खबरें। आज स्टेट के पेपर्स में बड़े बदलाव और अहम रिपोर्ट छपी है, तो चलिए इसे डिटेल्स पर नजर डालते हैं। सो द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, अरुणाचल पहली खबर ये है कि जहां नीट मुद्दे पर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, पार्लियामेंट के चल रहे मॉनसून सेशन में अपोजिशन लीडर्स चाहते थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बात हो, पर जब उन्हें मौका नहीं मिला तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई एमपीज प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस के बाहर सिट इन प्रोटेस्ट यानी धरने पर बैठ गए। मामला इतना बड़ा था कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वहां पहुंचकर राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं को फोर्सफुली डिटेन कर लिया। अपोजिशन अब डायरेक्ट पीएम, होम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी और अहम खबर हमारे स्टेट के वोटर्स के लिए है। अरुणाचल प्रदेश का नया ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर दिया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे स्टेट की वोटर लिस्ट लगभग 20% छोटी हो गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के बाद टोटल 8.87 लाख इलेक्टोरल्स में से 1.69 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक ये लोग या तो परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं या फिर एब्सेंट हैं।

इंडियन एंट्रीज है या उनकी डेथ हो चुकी है। अगर आपका नाम भी गलती से कट गया है तो परेशान मत होइए। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक आप क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के तहत अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट 22 सितंबर को आएगी।

तीसरी खबर नामसाई से एक बड़ी पुलिस एक्शन को लेकर है। नामसाई डिस्ट्रिक्ट में पिछली रात तेंकापानी रिजर्व फॉरेस्ट और लाल पहाड़ रोड के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस और एक अननोन इंसर्जेंट ग्रुप के बीच भयानक फायरिंग हुई। इस क्रॉस फायर में मोमोंग विलेज की एक 30 साल की महिला जिनका नाम कोइलाना नामचुम है, उनके लेफ्ट नी पर गोली लग गई। उन्हें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। इस पूरे इंसिडेंट के बाद असम राइफल्स ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर टू सस्पेक्ट को दबोचा है और उन्हें आगे की कड़ी जांच के लिए नामसाई पुलिस को सौंप दिया है। चौथी खबर हमारी लाइफलाइन यानी रोड कनेक्टिविटी पर है। पिछले दिनों पोसा और होज एरियाज को क्लाउड बर्स और मैसिव लैंडस्लाइड्स हुए थे, उसने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। हालांकि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट अरुणांक टीम ने दिन रात मेहनत करके टेम्पररी रास्ता तो खोल दिया था, पर अभी जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक रोड के बड़े वॉशआउट एम्बैकमेंट्स को पूरी तरह से डबल लेन स्पेसिफिकेशन के साथ कम्प्लीटली रिस्टोर करने में अभी कम से कम 2 महीने का वक्त और लगेगा। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी कम्यूटर्स को इस रूट पर ट्रैवल करते वक्त एक्स्ट्रा अलर्ट रहने और बदलते मौसम पर ध्यान रखने की सलाह दी है। और आखिरी खबर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर की। लद्दाख के नेता और पर्यावरण के लिए आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक, जो दिल्ली में हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे और जिन्हें डिटेन किया गया था, उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने ऑर्डर्स के बाद उन्हें टाइट सिक्योरिटी के बीच सफदरजंग हॉस्पिटल से गुरुग्राम के मेदंता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है ताकि उन्हें बेहतर मेडिकल केयर मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश और स्टेट की आज की सभी अहम सुर्खियां पूरी डिटेल के साथ। मौसम थोड़ा सेंसिटिव चल रहा है, इसीलिए अगर आप घर से निकल रहे हैं तो अपना और अपने परिवार को पूरा ध्यान रखें। मैं जल्दी हूं पर आपके लिए छोड़ जाती हूं आज का तीसरा और आखिरी शानदार गाना। अपनी सुबह को एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम। सो हैव अ वंडरफुल डे। दोस्तों, इस गीत के बाद आप सुन पाएंगे तगिन भाषा में समाचार, तो आप कहीं मत जाएगा।

गुड मॉर्निंग ईटानगर। अभी आप सुन रहे थे तागिन भाषा में समाचार आकाशवाणी ईटानगर पर। ये वक्त है एक ऐसी महफिल का जो हमेशा जवान रहती है, यानी आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम सदाबहार। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। वैसे दोस्तों, चलते चलते अभी स्टूडियो के बाहर जब मेरी नजर गई तो बस एक ही सवाल दिमाग में आया, हाउ इज द मॉनसून ट्रीटिंग यू? क्या आप सभी को भी इस बारिश की से उतना ही प्यार है जितना कि मुझे है? पता है ये बड़ी अजीब सी बात है, अगर मैं सच बताऊं तो जब मैं छोटी थी तो तब मुझे बारिश से एकदम नफरत होती थी। लाइक सीरियसली आई एब्सोल्युटली हेटेड बीइंग ड्रेंच्ड इन मॉनसून। वो स्कूल जाते वक्त गीले हो जाना, कपड़े खराब होना, वो सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन पता नहीं कैसे इतने सालों बाद लाइफ में ये पहली बार हो रहा है कि जब मुझे इस बारिश से सच में प्यार होने लगा है। पर अपना जब भी ये बूंदे गिरती है इस बारिश में, कुछ ऐसी बात है जो मुझे मेरी जिंदगी की हर छोटी सी छोटी चीज की याद दिला देती है। मुझे हर चीज नॉस्टैल्जिक लगने लगता है, और ये जो बारिश की आवाज होती है ना, वो इतनी सूदिंग होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, पर अब तो हाल ही है कि जिस दिन बारिश नहीं भी होती है, मैं रात को सोने से पहले YouTube पर रेन साउंड्स या वाटर साउंड्स प्ले कर लेती हूँ। मैं सबको कहती हूँ कि ये दुनिया का सबसे तेज तरीका है नींद आने का। वेल, कम से कम मेरे लिए तो ये ट्रिक 100% काम करती थी। बल्कि अचानक बारिश हो जाती है और सुकून की नींद आती है। वैसे पुराने गानों का भी इस बारिश जैसा ही मिजाज होता है, दोनों ही सुकून देते हैं। तो चलिए इसी सुकून के साथ सुनते हैं हमारा आज का पहला एकदम सदाबहार नगमा, और फिर लौटकर जानेंगे कि आज हमारे ईटानगर और पूरे अरुणाचल में मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी जानकर पर आप मेरे साथ यानी आरजे याजो के साथ सुन रहे हैं सदाबहार। बारिश की बातें तो हो गई, पर चलिए अब थोड़ा सीरियस होकर ये देख लेते हैं कि हमारा आईएमडी आज के मौसम को लेकर क्या डाटा दे रहे हैं। आज तारीख है 22 जुलाई 2024 और चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे कैपिटल सिटी ईटानगर की। आईएमडी के मुताबिक आज ईटानगर में दिन भर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। आज ईटानगर और उसके आसपास के इलाकों में एक या दो बार हल्की सी मध्यम बारिश के झटके या गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट अपने साथ जरूर रखें। तापमान की बात करें तो आज ईटानगर का मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और रात को मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। बारिश की वजह से मौसम में थोड़ी उमस यानी ह्यूमिडिटी तो रहेगी, पर शाम होते होते ठंडक थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये थी हमारे कैपिटल का हाल। चलिए अब वक्त हो चला है हमारे दूसरे म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में एक और बेहतरीन एवरग्रीन गाना और उसके बाद जानते हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश का डिटेल वेदर रिपोर्ट।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल।

दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सदाबहार में। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश के वेदर मिजाज पर, क्योंकि आईएमडी ने पूरे स्टेट के लिए थोड़ा बदला हुआ अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज पूरे अरुणाचल प्रदेश के फ्यू प्लेसेस यानी कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा। एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि आज यानी 22 जुलाई के लिए आईएमडी ने पूरे स्टेट में कोई बड़ा हेवी रेनफॉल अलर्ट बारिश की वार्निंग नहीं दी है। मौसम थोड़ा राहत भरा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए ये राहत सिर्फ अगले 2 से 3 दिनों के लिए है। आईएमडी ने साफ कहा है कि 25 और 26 जुलाई को एक बार फिर से स्टेट के आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और तेज थंडरस्टॉर्म का सिलसिला लौट सकता है। दोस्तों पिछले दिनों हुए क्लाउडबर्स्ट और लैंडस्लाइड की वजह से हमारी रोड खासकर होचपोटिन रोड पहले ही प्रभावित है और उसे ठीक होने में वक्त लग रहा है। भले ही आज भारी बारिश की वार्निंग नहीं है, फिर भी पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल करते वक्त एक्स्ट्रा कॉशियस रहे, क्योंकि मिट्टी पहले से ही नरम है और छोटे मोटे रॉकफॉल्स अभी भी हो सकते हैं। मौसम चाहे थोड़ा ठंडा हो या गर्म, आपका दिल हमेशा गानों की तरह सदाबहार रहना चाहिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, पर आपके लिए छोड़ जाती हूँ आज का तीसरा और सबसे प्यारा एवरग्रीन गाना। सुनते रहिए आकाशवाणी जानकर, अपना पूरा ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। दोस्तों इस गीत

0: के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभाश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBO 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी

0: लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुडा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malvan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए हमने आईटी कृषि फूड प्रोसेसिंग फार्मास्यूटिकल्स टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं
2: Our correspondent covering the president's visit to North Macedonia has filed this report.
4: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold chain logistics, renewable energy, artificial intelligence, cyber security, and startup ecosystems. The president invited North Macedonia to join initiatives such as international Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the Global Biofuels Alliance. She also extended an invitation to participate in the World Audiovisual Entertainment Summit WAVES to be held in India next year. This is Subhashree Mahapatra from Skopje, North Macedonia.
2: Concluding her address, President Murmu urged businesses, investment agencies and industry bodies of both countries to build enduring partnerships through technology transfer, joint ventures and local value creation. India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality health care. A report.
5: The 16th BRICS Health Ministers meeting reflects India's commitment to advancing collective action on key global health priorities through the guiding theme of building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Addressing a press conference, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava said that discussions during the ministerial meeting will focus on strengthening cooperation in areas such as health security, pandemic preparedness, digital health, innovation, access to affordable medicines, traditional complementary and integrative medicine, tuberculosis, health lifestyles, mental wellness and resilient health systems. The official program will commence with the senior officials meeting today, followed by the 16th BRICS health ministers meeting tomorrow, chaired by Union Health and Family Welfare Minister JP Nadda, during which health ministers will deliberate on key global and regional public health priorities and consider the adoption of the 16th BRICS health ministers declaration. The meeting will provide an important platform for advancing the health priorities of the global south and promoting collective action towards achieving universal health coverage and the health-related sustainable development goals. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
2: Indian Navy will commission INS Malvan, the second of the Mahe class anti-submarine warfare shallow water craft at Karwar in Karnataka today, marking another milestone in India's indigenous naval shipbuilding program. The commissioning ceremony will be presided over by Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh, in the presence of Vice Admiral Sanjay Vatsyayan, Flag Officer Commanding-in-Chief Western Naval Command, senior naval officers, veterans and other distinguished guests will also attend the event. More from our correspondent.
6: INS Malwan anti-submarine watercraft built by Cochin Shipyard under Atmanirbhar Bharat mission uses more than 80% indigenous equipment and technology. Armed with RBU 6000 rockets and DRDO torpedoes and a German-Indian sonar suit, it can play a dominant role in guarding our undersea defense. This Mahe class warship is testament to country's growing capability in warship construction and our growing strength in maritime security and anti-submarine warfare capabilities. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.

0: वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलोंग से दुनिया की ताजा खबरें आकाशवाणी ईटानगर पर। ये वक्त हो चला है एक ऐसे प्रोग्राम का जो हर सुबह आपके लिए लेकर आता है ढेर सारी नॉलेज, एंटरटेनमेंट और मुस्कान, यानी आपका अपना शो हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों मैं हूँ आपके अपने दोस्त और हॉर्स आरजे याजू। उम्मीद है आप सब एकदम फिट और ताजा तरीन होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 22 जुलाई 2024। वैसे तो हर दिन किसी ना किसी वजह से खास होता है, पर आज का दिन हम सबके लिए और आओ सच कहूँ तो हमारे बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए बेहद जरूरी है। आज पूरे ग्लोब में ऑफिशियली मनाया जा रहा है वर्ल्ड ब्रेन डे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी हर साल आज के दिन को हमारे दिमाग की सेहत यानी ब्रेन हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाती है। वैसे दोस्तों जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हम ज्यादातर फिजिकल फिटनेस, जिम जाना या वेट लॉस पर ही ध्यान देते हैं, पर उस मास्टरमाइंड का क्या जो हमारी हर सांस, हर इमोशन और हमारे हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यस, हमारा सुपर कंप्यूटर, हमारा ब्रेन। पता है मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारा दिमाग कितना अजीब है ना। ये पूरे बॉडी का वेट का सिर्फ 2% होता है, पर हमारी बॉडी की 20% एनर्जी अकेले कंज्यूम कर जाता है। इतनी छोटी सी पर पूरी लाइफ का कंट्रोल रूम है इसके पास। चलिए आज की इस कंट्रोल रूम को थोड़ा जरूरी फ्यूल देते हैं नॉलेज का, पर उससे पहले आपका मूड को एकदम रिफ्रेश करने के लिए प्ले करती हूँ आज का पहला गाना। सुनिए इस खूबसूरत ट्रैक को और फिर लौट कर बात करेंगे दिमाग की कुछ बेहद दिलचस्प बातों पर।

वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर पर आप मेरे यानी अपने आरजी आजू के साथ सुन रहे हैं हेलो ईटानगर। आज वर्ल्ड ब्रेन डे के इस मौके पर हम बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ की। और दोस्तों, इस साल यानी 2024 का जो ऑफिशियल ग्लोबल थीम है ना, वो बेहद डिजिटल और थॉटफुल है। इस साल का थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। इसका मतलब पता है क्या है? कि दुनिया की हर इंसान को, चाहे वो किसी भी कोने में हो, उन्हें ब्रेन की बीमारियों का सही और टाइम पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक शॉकिंग रिपोर्ट आई है दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 3.4 बिलियन लोग किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी दिमाग से जुड़ी परेशानियों के साथ जी रहे हैं। और इन बीमारियों में सबसे कॉमन है स्ट्रोक, माइग्रेन, डेमेंशिया और पार्किंसंस। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अगर सर में लगातार दर्द हो रहा हो या अचानक भूलने की आदत बढ़ गई हो तो हम बोलते हैं अरे यार स्ट्रेस होगा, थकावट होगी, ठीक हो जाएगा। पर यही बीमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ब्रेन डिसऑर्डर को लेकर हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि हम सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी कहते हैं कि अगर किसी को दिमाग से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो अर्ली इंटरवेंशन यानी शुरुआत में ही डॉक्टर को दिखाना ही सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने डेली रूटीन में कैसे अपने दिमाग को सुपर शार्प रख सकते हैं। पर पहले वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और फिर लौट कर आते हैं इस एजुकेशनल सफर पर।

0: and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेन डे की। अब मैं आपसे कुछ पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ। एक आरजी के रूप में मुझे दिन भर बोलना पड़ता है, स्क्रिप्ट याद रखनी पड़ती है और एक्टिव रहना पड़ता है, और इसके लिए मेरा ब्रेन शार्प होना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करती हूँ पता है? मैं दिमाग के लिए 5 पिलर्स को फॉलो करती हूँ जो एक्सपर्ट्स भी रिकमेंड करते हैं। पहला है मेंटल स्टिमुलेशन, दिमाग की कसरत। दोस्तों जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही दिमाग के लिए पजल्स, सुडोकू या कोई नई लैंग्वेज सीखने बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा है क्वालिटी स्लीप, गहरी नींद। पता है जब हम सोते हैं ना तो हमारा ब्रेन पूरे दिन के टॉक्सिन्स को साफ करता है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो दोस्तों तो आप अपने सुपर कंप्यूटर को धोखा दे रहे हैं। तीसरा है हेल्दी डाइट, बादाम और अखरोट तो हम सब सुनते आए हैं, पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी, रोज कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक करने से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है जो हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है। और पांचवा है सोशल कनेक्शन, दोस्तों के साथ बैठना, बातें करना और खुश रहना स्ट्रेस को कम करता है, और स्ट्रेस दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। और हाँ दोस्तों एक और अहम बात, अगर आपको ये या आपके किसी जानकार को अचानक चलने में बैलेंस खोना, चेहरे पर नमनेस आना या बोलने में लड़खड़ाहट जैसे दिक्कत लगे तो बिना देर किए तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि ये स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ब्रेन हेल्थ हमारा राइट है, प्रिविलेज नहीं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आज के ये एजुकेशनल बातें आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव लाएंगी। अपने दिमाग को ख्याल रखिए, पॉजिटिवली सोचिए और हंसते रहिए। आकाशवाणी चैनल करोने पे 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली,

0: मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मालवन में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। माहे श्रेणी के ये युद्धपोत तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में प्रभावी परिचालन के लिए बनाए गए हैं। इनसे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और सुदृढ़ होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुडा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन, मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: Concluding her address, President Murmu urged businesses, investment agencies and industry bodies of both countries to build enduring partnerships through technology transfer, joint ventures and local value creation. India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality health care. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava told media persons that the meeting

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है। दोस्तों, आप हवाओं में घुलने जा रहा है थोड़ा सा ग्लैमर, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारा तिनसल टाउन का मसाला। वक्त हो चला है आपके सबसे दिलदार चुलबुले और चटपटे प्रोग्राम का। जी हाँ, इट्स टाइम फॉर फिल्मी गपशप। आप सभी प्यारे श्रोताओं को इस चमकीली और धांसू सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त और बीताउन का खबरी आरजे याजू, बिल्कुल फ्रेश और गर्मा गर्म बॉलीवुड अपडेट्स लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। पता है दोस्तों, सिनेमा हमारे जिंदगी का वो आईना है जो हमारी सुबह को रोमांस से भर देता है। चाहे बॉक्स ऑफिस का धांसू रिकॉर्ड्स हो या ओटीटी पर आने वाली धमाकेदार वेब सीरीज, फिल्मी दुनिया में हर पल कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होते रहता है। और अगर आप भी हैं मेरे तरह सच्चे फिल्मी दीवाने, तो बस आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज मेरे पास है बॉलीवुड और ओटीटी से जुड़ी ऐसी खबरें जो आपको बिल्कुल तारा ताजा कर देंगी। तो चलिए इस फिल्मी सफर का आगाज करते हैं एक सुपरहिट धांसू एनर्जेटिक गाने के साथ। आप इस गाने का लुत्फ उठाइए और मैं तैयार करती हूँ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं थिएटर्स में चल रहे सबसे बड़ी धमाके की। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त दो फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। पहली है वेलकम टू द जंगल, जिसमें अक्षय कुमार की बड़ा एंसेंबल कास्ट पूरे देश को हंसा रहा है। और इस फिल्म का गाना घिस घिस इस वक्त सोशल मीडिया पर रील्स पर तबाही मचा रहा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 ओपनिंग के साथ कमाल की पकड़ बनाई हुई है, लेकिन इसी के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई है अजय देवगन और उनकी पलटन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4, जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर ये अच्छी कमाई कर रही है, वहीं सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर जनता इसके AI विजुअल्स को लेकर काफी बातें कर रही है और लोग इसे मिक्स रिव्यूज दे रहे हैं। किसी को ये बेहद हंसा रहा है तो कोई इसे थोड़ा क्रिंज बोल रहा है। चलिए बॉक्स ऑफिस के इस मुकाबले के बीच सुनते हैं एक और जबरदस्त गाना और इसके बाद बताऊंगी कि बॉक्स ऑफिस की असली अल्फा फीमेल कौन बन चुकी है।

0: दोस्तों बात करते हैं यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सबसे पहली फीमेल लेड फिल्म अल्फा की। आलिया भट्ट और शार्वरी वाक्स टेरर इस एक्शन थ्रिलर ने थिएटर्स पे काफी धूम मचाई हुई है और आज काफी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रहा है। बॉबी देओल के खूंखार विलन अवतार और आलिया के हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स को देखकर लोग दांतों तले उंगली चबा रहे हैं। इसके साथ ही थिएटर्स में एक और क्राइम थ्रिलर चल रही है जिसका नाम है बेबी दो डाइडो, जिसमें हुमा कुरैशी एक हिट वुमन के डबल लाइफ के रूप में बवाल एक्टिंग कर रही है। अगर आपको डार्क एज सिनेमा पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। चलिए अगला गाना सुनते हैं और इसके बाद रुक करेंगे ओटीटी यानी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बड़ी खबरों पर। धन्यवाद।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों चलिए अब घर बैठे एंटरटेनमेंट यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हालचाल जान लेते हैं। स्ट्रीमिंग पर इस वक्त फीमेल लेड सीरीज का दबदबा चल रहा है। सबसे पहले बात करें Z5 की तो करिश्मा कपूर की नियो नॉयर क्राइम थ्रिलर ब्राउन को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसमें उनका लुक और सस्पेंस बिल्कुल टॉप नॉच है। वहीं प्राइम वीडियो पर एक नया इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा आया है जिसका नाम है राग, जो अपने अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और मिस्ट्री से सबको स्क्रीन से चिपकाए हुए हैं। और अगर आपको अपनी फिल्म के फैमिली के साथ कुछ देखना है तो सोनी लिव पर मिश्रा परिवार फिर से लौट आया है गुल्लक Season 5 के साथ। वही पुरानी दोस्ती, वही किस्से और वही प्यारी सी नोकझोंक श्रोताओं को बहुत इमोशनल और खुश कर रही है। चलिए ओटीटी की इस दोस्त के बाद एक और मीठा सा गाना सुनते हैं और फिर चलेंगे बी टाउन की गरम गरम सेलेब्स गॉसिप्स की तरफ।

दोस्तों, संगीत का सिलसिला चलता रहेगा, पर अब वक्त बात करते हैं बॉलीवुड सेलेब्स के बीच चल रही हॉट गपशप की। दोस्तों, हाल ही में राघव जुएल की बर्थडे पार्टी में शहनाज गिल उनका हाथ थामे हुए बाहर निकली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, इस पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने भी एक रेयर अपीयरेंस दी, जिसे देखकर पैप्स के कैमरे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी पार्टी के माहौल के बीच राघव जुएल के फैंस के लिए एक और खुशखबरी है। उनकी आने वाली कॉमेडी फिल्म भाई तेरा स्टार है का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो बिल्कुल एक लाफ राइड होने का वादा करता है। चलिए, इस वायरल न्यूज की बात सुनते हैं एक और सुपरहिट सॉन्ग।

लाइंस में बनी हुई है और थोड़ी चिंताजनक है। वेटरन एक्टर राजपाल यादव को लेकर एक बड़ी खबर आई है। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद एक 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसने उनके फैंस को काफी चौंका दिया है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में न्यूज आई थी कि प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी के सेट पर एक्टर राजेश शर्मा को किसी कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन है। अक्षय कुमार ने भी उनके लिए ट्वीट करके कहा है कि जल्दी ठीक हो जाएगा, वी प्रे कि वो जल्द ही जल्द रिकवर हो जाएगा। चलिए इन खबरों के बीच थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करते हैं एक और

दोस्तों, गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसमें थोड़ी नाराजगी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया हाल ही में एक मुंबई इवेंट में पापराजी पर काफी भड़क गई। उन्होंने फोटोग्राफर्स को इंट्रूसिव बैक शॉट्स लेने पर जमकर फटकर लगाई।

और कहां बंद करो ये सब, जिसके बाद इंडस्ट्री में सेलेब्स की प्राइवेसी को लेकर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। चलिए अब सुनते हैं हमारा अगला गाना और इसके बाद लेकर आऊंगी सबसे बड़ा मेकअप अपडेट जो पूरी दुनिया में धमाल मचाने वाला है।

दोस्तों ये थी फिल्मी गपशप, उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज। यह आकाशवाणी चैनल का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कहीं मत जाएगा, अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिया में भारतीय उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे अधिक असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। फिलीपींस के मनीला में आज आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक समय तक हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देश अपने भविष्य के प्रति आशावादी हैं और इसीलिए चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष है। विदेश मंत्री आसियान भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक सहित आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठक के लिए दो दिन की यात्रा पर फिलीपींस के मनीला में है। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
1: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव सहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदारवादी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे

0: पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकवादियों को शह और सहायता देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी छतरू इलाके में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहा था। इसकी पहचान सिंहपुर के डवाथर निवासी मोहम्मद रफीक नाइक के तौर पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में एक आदर्श और उत्कृष्ट नागरिक के गुणों को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। ये दिन फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा के सम्मान में मनाया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध मनकुराद आम अपनी खास खुशबू, मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग और जम्मू के ठंडे इलाकों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि अब स्कूल 27 जुलाई को खुलेंगे। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक तेज वर्षा और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश हो सकती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 371 अंक गिरकर 77,097 जबकि निफ्टी 106 अंक फिसलकर 24,081 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एचएस प्रणॉय कल प्रतियोगिता के शुरुआती राउंड में मलेशिया के खिलाड़ी से हारकर बाहर हो गए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu has called for expanding Indian-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the Indian-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains. In his opening remarks at ASEAN Post-Ministerial Conference with India 2026 in Philippines today, Dr. Jaishankar said that energy, food and health security can no longer be taken for granted. He said that both India and ASEAN are optimistic about their prospects and therefore the focus should be on opportunities even while addressing challenges. Dr. Jaishankar noted that this year is the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation and it is a timely reminder of the progress ASEAN and India can make together towards a more stable and secure future. India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality healthcare. Indian Navy will commission INS Malwan, the second of the Mahi class anti-submarine warfare shallow water craft at Karwar in Karnataka today, marking another milestone in India's indigenous naval shipbuilding program. The commissioning ceremony will be presided over by Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, in the presence of Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command. Senior naval officers, veterans and other distinguished guests will also attend the event. In a major initiative to boost female participation in higher education and reduce dropout rates, the Uttar Pradesh government has decided to provide free scooty to meritorious female students of the state. The cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath approved the guidelines for the implementation of the Rani Lakshmibai Scooty Yojana. India has reaffirmed its commitment to a rule-based, transparent and non-discriminatory multilateral trading system during its 8th trade policy review at the World Trade Organization, highlighting the country's growing role in global trade. Commerce Secretary Rajesh Agarwal emphasized India's engagement with the global trading system and its efforts to strengthen trade ties through an expanding network of trade agreements, a liberalized foreign direct investment regime, and continued support for cooperation among developing countries. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat and Madhya Maharashtra today. IMD has also forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Konkan, Goa, Madhya Pradesh and Punjab during the next 2 to 3 days. Meanwhile, Delhi, Haryana, Chandigarh, Uttarakhand, Odisha, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gangetic, West Bengal, Vidarbh and some parts of northeast India are likely to experience heavy rainfall till tomorrow. In China Open Badminton, PV Sindhu will take on compatriot Unnati Huda and Lakshya Sen will get his men's singles campaign underway today. Ayush Shetty will take on Alvi Farhan in the singles opening round today. Men's doubles pair MR Arjun and Hariharan Amsakarunan. Mixed doubles pairs Rohan Kapoor, Rutvika Shivani Gadde and Tanisha Krasto Dhruv Kapila will also be in action today. That is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज से। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके दिन के सबसे खास सेगमेंट का, जहां माइक मेरा होता है पर मर्जी पूरी तरह से आपकी होती है। यस, यू गेस इट राइट, ये है आपका अपना शो रेडियो ऑन डिमांड और मैं हूं आपकी RJ याजू। और मेरे अभी मेरे साथ है ढेर सारी मैसेजेस और आपकी पसंदीदा गानों की लंबी सी लिस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं इस फरमाइश सफर को और जुड़ते हैं हमारे पहले लिसनर के साथ। हमारी पहली रिक्वेस्ट आई है हमारी प्यारी सी लिसनर गुमेमय बागरा की तरफ से, जो हमें सुन रही है ही की बागरा आलो से। गुमे जी ने बड़ी ही प्यारी फरमाइश भेजी है और फिल्म दिल है कि मानता नहीं का एक बेहद ही खूबसूरत नगमा मांगा है। तो गुमे जी, आपकी रिक्वेस्ट पर पेश है ये गाना, हम तो मशहूर हुए हैं।
1: रेडियो ऑन डिमांड

सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।

Action! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

क्या बात है दोस्तों, इस गाने ने तो स्टूडियो का मौसम ही बदल दिया। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली रिक्वेस्ट की तरफ। और दोस्तों ये रिक्वेस्ट था थोड़ी स्पेशल और अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये आई है हमारी पड़ोसी स्टेट नागालैंड के पुदुचा से। हमें

मैसेज भेजा है कोबू हैसिली जी ने। कोबू जी, आपने रिक्वेस्ट किया है गाना तुमसे अच्छा कौन है, पर दोस्तों मैंने चेक करने पर मुझे दो अलग अलग आइकॉनिक गाने मिले हैं। अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि कोबू को मोहम्मद रफी साहब वाला क्लासिक ट्रैक सुनना है या फिर नया वाला। नया वाला एज इन जो 90s पे आए थे। पर हे, आप नागालैंड से हमारे इतने प्यारे पड़ोसी हैं, तो हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। इतना तो बनता है हमारे पड़ोसी के लिए, है ना। तो कोबू जी, आपके लिए मैं इस नाम के दोनों गाने बैक टू बैक प्ले कर रही हूँ, ताकि आपका फेवरेट गाना मिस ना हो।

नागलैंड तक हमारी आवाज पहुंच रही है और वहां से इतना प्यार मिल रहा है, देखकर दिल सच में बहुत ही खुश हो गया। चलिए अब अगला खत उठाते हैं, और जो हमारे एक और पड़ोसी स्टेट असम से आया है। हमें लिखा है हमारे डेली लिस्नर हर्षित गोस्वामी ने, जो हमें बोकाकत असम से रोज सुनते हैं। हर्षित जी, आपकी डेली लॉयल्टी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फिल्म सैयारा से एक बेहद सुकून भरा गाना रिक्वेस्ट किया है, तो आपकी फरमाइश पर ये रहा।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड, मेरे यानी आपके आरजी याजे के साथ आकाशवाणी ईटानगर पर। रिक्वेस्ट का सिलसिला रुकने वाला नहीं है दोस्तों, और हमारी अगली फरमाइश भी असम के सोनितपुर से आई है। हमें ये लिसनर है अमल बसुमतारी, और उन्होंने फिल्म मिलन का एक बड़ा ही एवरग्रीन गाना सुनने की ख्वाहिश जताई है। तो अमल, आपकी रिक्वेस्ट पर ये रहा बेहद प्यारा ट्रैक। एक बात बताऊं,

दोस्तों वक्त हो चला है हमारी अगली फरमाइश की और ये रिक्वेस्ट आई है एक जबरदस्त ट्रायो यानी तीन दोस्तों की तरफ से एक मुलाकात असम से हमें लिखा है रोमेश रूनू और लक्की ने। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर एक बेहद आइकॉनिक गाना चूज किया है तेरे मेरे बीच में और उन्होंने इस गाने को अपने सभी दोस्तों के नाम तरकीब किया है। वैसे क्या बात है, दोस्ती हो तो ऐसी। तो रोमेश रूनू लकी और उनके सभी दोस्तों के लिए पेश है आज का ये सुपरहिट नगमा।

क्या बात है दोस्तों, गाने तो अभी और भी बहुत सारे हैं और मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, पर क्या करूं दोस्तों, वक्त की अपनी ही सीमा होती है, मेरे टाइम लिमिट यही खत्म हो रही है। तो जिन दोस्तों के गाने आज मैं नहीं बजा पाई उनसे दिल से माफी चाहती हूं, पर उदास बिल्कुल मत होइए, कल सुबह आप फिर से अपनी रिक्वेस्ट भेज सकती है हमें। तो दोस्तों, मैं हूं आरजी याजू, आपसे विदा लेती हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारे ये संगीत में सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे सूर्य तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग और तकनीकी अभियंता पी बरुआ। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे नानस के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपनी आरजे आजू को दीजिए इजाजत या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है जहां होती है दिल से दिल के पास। आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरुड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने भारत चीन संबंधों के धीरे धीरे सामान्य होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गहरे द्विपक्षीय सहयोग के लिए सीमा पर शांति मूलभूत शर्त है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का मानना है कि आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर ही एक स्थिर और सहयोगात्मक संबंध का सर्वोत्तम विकास हो सकता है। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में उठाए गए कई विश्वास निर्माण उपायों का स्वागत किया, जिनमें सीधी उड़ानों की पुनः शुरुआत, वीजा व्यवस्था में संशोधन, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार का पुनः शुरुआत शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बनी सहमति को दोहराया कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। श्री जयशंकर ने कहा कि इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना कूटनीति की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपियो में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
1: भारत ने कल चंडीगढ़ में ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए लगातार कल भी हवाई हमले किए। कमांड ने सैन्य संचालन केंद्र, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर और प्रबंधन इकाई

0: को निशाना बनाया। इससे पहले ईरान ने पिछले 3 महीनों में महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले 30 से ज्यादा वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया था। इन हमलों से सैकड़ों नाविकों की जान खतरे में पड़ी और आवाजाही को नुकसान पहुंचा। अमरीका ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष की लागत अब तक $37.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने डेमोक्रेट सांसद डिक डर्बिन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विनियोग समिति के समक्ष इसकी जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 707 अंक गिरकर 76,762 जबकि निफ्टी 196 अंक फिसलकर 23,991 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कल तक मूसलाधार वर्षा और संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन तथा जल भराव की आशंका व्यक्त की है। केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज और कल बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुड्डा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Indian Navy inducted the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahe class, INS Malvan, at Karwar in Karnataka today. This is a significant achievement in India's indigenous warship building. Air Chief Marshal A.P. Singh, the Chief of the Air Staff, was the chief guest at the ceremony. Speaking on this occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh appreciated the Navy for its efforts towards Atmanirbharta and said that INS Malvan will play a crucial role in maritime security of the country. Coastal region. INS Malvan anti-submarine watercraft built by Cochin Shipyard under Atmanirbhar Bharat Mission uses more than 80% indigenous equipment and technology. The three-day meeting of BRICS health ministers has begun in Chandigarh. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality health care. Earlier, India successfully hosted the BRICS meeting on traditional, complementary and integrative medicine at Chandigarh yesterday as part of its BRICS 2026 chairship. The meeting brought together senior government officials, technical experts and delegates from BRICS member countries to strengthen multilateral cooperation, promote the exchange of knowledge and best practices and advance collaboration in the field of traditional, complementary and integrative medicine. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on the digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: Delhi Metro Rail Corporation has informed that Janpath, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Central Secretariat and Sevateerth Metro stations have been closed till further instructions due to security reasons. In a social media post, the Delhi Metro Rail Corporation noted that the interchange facility is available at Rajiv Chowk and Central Secretariat. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Chinese counterpart Wang Yi during the East Asia Summit and ASEAN Regional Forum meetings at Manila in Philippines.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों स्टूडियो के घड़ी में बज चुके हैं 11:10, चाय का दूसरा कप रेडी है और मैं आ चुका हूं आपके दिन को सुपरचार्ज करने। आप देख रहे हैं, नहीं नहीं दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना शो। और दोस्तों इससे पहले कि आज का ये सबा हम शुरू करें, दोस्तों आज का हमारा ये सबा शुरू करने से पहले मैं एक शॉट आउट देना चाहता हूँ आरजे याजू नादा को। उन्होंने सुबह सुबह जो एनर्जेटिक स्टार्ट दी है, मूड एकदम सेट कर दिया है, थैंक्स टू याजू। और अब ये है मेरा सेकंड ट्रांसमिशन आप सभी के साथ। पहला वाला ट्रांसमिशन तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे जान। आज मेरे पास है सबसे ट्रेंडी ट्रैक्स, थोड़ी सी बातें और देर सराफत। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और वॉल्यूम को थोड़ा अप कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होगा हमारा दूसरा प्रसारण सबक। और दोस्तों इससे पहले कि हम इस सबक को शुरू करें, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज के इस सबक को, आज की इस सबक के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और इंजीनियर ऑन ड्यूटी में है एचएम ब्यूसर। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, सबक की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर के साथ।

लीजिए दोस्तों पैसे ये बेहतरीन गीत हमारे इस कार्यक्रम फिल्मी लहर में आप सभी के लिए फ्रॉम द फिल्म वांटेड जिसे गाया है श्रेया घोषाल और साज ने. जी हाँ दोस्तों एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग. मैं नोट कराता हूँ सुनते रहिए अरुण FM 102.1 MHz जहाँ होती है दिल से दिल की बात.

0: तो श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे वेस्टर्न मेलोडीज आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, लेकिन इसके बाद हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जानमान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवान को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश

हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, वेलकम टू द क्रेजीएस्ट म्यूजिकल जंक्शन ऑन योर रेडियो डायल. आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात. और मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास, जो बिल्कुल रेडी है आपकी इस संगीत में सफर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, बॉलीवुड हिट्स तो हम सब दिन रात सुनते हैं, पर वो गाने जो बियॉन्ड हिंदी सिनेमा पूरे देश को अपने बीच पे नचा रहे हैं, उनका क्या? जी हाँ दोस्तों, भाषा चाहे तमिल हो, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी या मराठी, जब म्यूजिक में दम होता है तो बीट सीधा दिल पे लगती है. और जरूरी तो नहीं कि हर गाने के लिरिक्स समझ आए. सो दोस्तों, बगल अप, बिकॉज इट्स टाइम फॉर द अल्टीमेट मल्टीलिंगुअल सेलिब्रेशन, द नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग. दोस्तों, म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, बस एक ही रिलीजन होता है, प्योर वाइब. तो छोड़ो सारे ट्रांसलेशन एप्स, हेडफोन्स लगाओ, बेस थोड़ा पंप करो और बस रिदम को फील करो. पहला ट्रैक आ रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द साउथ, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात.

श्रोता दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट परिचय

0: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नोटिस पर है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे इस संगीत में सफर में हिंदी क्लासिक म्यूजिक के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यू

दोस्तों दफन कर दो सीने में यादों का समंदर, 60s से 80s के सुर जब बजते हैं तो सुकून मिलता है दिल के अंदर। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और एक बहुत बहुत ही प्यारी सी वही पुरानी वाली हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आज का सीन एकदम सिंपल है, आज ना कोई पास्ट फॉरवर्ड लाइव होगी ना कोई रील का शोर, आज होंगे किशोर दा के एवरग्रीन फंदे, रफी साहब की दिल छू लेने वाली अंदाज और बर्मन दा का वो किलर 70s वाला स्वैग। तो बस फोन को अपने साइड पे रखो, चाय की मग उठाओ और चलो मेरे साथ यादों की सुहानी टाइम मशीन में। जी हाँ दोस्तों, पहला टाइमलेस क्लासिक ट्रैक बिल्कुल रेडी है आपके दिल की तार छेड़ने के लिए। ट्यून इन, वॉल्यूम अप और खो जाओ इस नॉस्टैल्जिक सफर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये सफर एक बेहतरीन गीत के साथ, आप जैसा कोई, जिसे गाया है नाजिया हसन। ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: और दोस्तों इसी बेहतरीन गीत के साथ आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे हमारे कुछ और भी बेहतरीन नगमों के साथ, तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर एंड हैज एवरीथिंग यू कुड इमेजिन इन योर एसयूवी। डॉल्बी एटमोस 5.7 सराउंड साउंड, यस। एडवांस लेवल 2 ADAS, यस। स्मार्ट पावर टेलगेट विद जेस्चर कंट्रोल, यस। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, यस। Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹67,500.
5: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
6: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
7: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश।

0: प्राइस।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
0: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
0: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
0: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
3: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
4: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और चलिए दोस्तों, लीजिए पेश है ये बेहतरीन नगमा किशोर कुमार की आवाज में फ्रॉम द फिल्म कर्ज। जी हाँ दोस्तों, लीजिए इस नगमे का मजा और मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने और कुछ बातें करने। तो सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

जी जी दोस्तों, पैसे ये बेहतरीन नगमा मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म दोस्तों, फ्रॉम द फिल्म ब्रह्मचारी। आइए सुनिए और एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग ओनली ऑन रोल एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

और दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात. तो चलिए दोस्तों अब आप सुनेंगे कुछ हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार. लेकिन हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, यहां होती है दिल से दिल की बात.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे

0: तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को जो उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
3: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

0: अमरीका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मूज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब शुरू होगा कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों वो पहला प्यार वो कागज की कश्ती, 90s के गानों में थी एक अलग ही मस्ती। नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों 90s का दौर ही कुछ अलग था। अनिल नारायण और अलका याग्निक के रोमांटिक ड्यूएट्स, कुमार सानू की मैजिकल आवाज और वो वॉकमैन वाला स्वैग। तो बस अपने डेली स्ट्रेस को कीजिए बाय बाय, कैसेट्स पेन से रिवाइंड कीजिए और मेरे साथ चलिए उस गोल्डन डेकेड्स में जहां हर गाना एक इमोशन था। दोस्तों आइए सुनते हैं इस शो में द पहला सॉन्ग चुरा के दिल मेरा, फ्रॉम द फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनारी, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

में जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए लेकर आए हैं हम एक बड़ा ही मजेदार गाना फ्रॉम द फिल्म अंजाम, जिसे गाया है अभिजीत भट्टाचार्य, आलका याग्निक विनोद राठौड़ और उदित नारायण ने। तो दीजिए पे से ये बेहतरीन गीत आप सबके लिए मेरे प्यारे लिसनर्स।

0: तो अनु पतम रंग मांगतन चाहे ज्ञात नहीं मारा सो रंग बाजिक सामना फ्रूट ना ये सिद्धाई सुनिंग
1: नहीं आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ मीडियम वेव्स सी पाक्सी सिप्सी चुमसी मीटर्स हो पाक्चे सिप हा किलो हर्ट्स में नहीं चलां खांदाई खांती हाउ ने को मायो मने वन बुक टू लंगनी पीते सोंग हिंग पाक साउ टू नहीं इंगना जी पी मई सोंग हिंग साउ हो नून जुनाए नहीं साउ सोंग वन कौ खाम लुक नांग प्रिया लोंग फोय मई अने थोम टिका Minister Hikchi Dr. S. Jaishankar won mane mai tang Chinese counterpart Khongman Hikchi Wang Yi mu East Asia Summit khansam ASEAN Regional Forum meetings nea ti Manila mung Philippines mai nei hop kan kayo mu kan na ta pai mai Dr. S. Jaishankar man chau kham gradual normalization wong kong mung india kacham mung china relation mai aulum si cha peace niati wang border mai au si angkau bilateral cooperation fundamental prerequisite wa au pin ni si mun kham kan ma ka yo wong kong song mung mai mutual respect mutual interest khan sam mutual sensitivity nei open nei ke stable sasana

श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे ताई कांति श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात। एंड लेट्स गो, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोग्राम की ओर। अब आप सुनेंगे द सो बॉलीवुड अपडेट्स।

नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूं बॉलीवुड की सबसे फ्रेश, सबसे सिजलिंग और सबसे मसालेदार खबरें। जी हाँ दोस्तों, घड़ी घर की घड़ी में बज चुके हैं टाइमिंग का परफेक्ट स्लॉट, और अगले कुछ पलों में हम कवर करेंगे बीताओं के वो तीनों मेजर धमाके जो पूरे इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं। तो बॉस, बगल अप, टर्न अप द बेस एंड लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द बॉलीवुड एक्सप्रेस, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडियन सिनेमा का धन का पूरे ग्लोबल पर बजने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार, यस यू हर्ड इट राइट, दोनों सुपरस्टार को हाल ही में एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया, जर्निंग ऑफ स्ट्रेट टू द यूएसए। और वजह दोस्तों, नीतीश तिवारी की मैग्नम ओपस रामायण का ट्रेलर अनवेल होने जा रहा है सैन डियागो कॉमिक कॉन 2026 में। दोस्तों सोचो, वॉल रूम 20 में 5,000 से ज्यादा इंटरनेशनल फैंस के सामने जब रणबीर का लॉर्ड रामा लुक और यश का रावण अवतार स्क्रीन पे आएगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर कॉमिक आर्ट कैरेक्टर लीक्स पहले से ही ट्रेंडिंग में है और फैंस इनसेन हो चुके हैं। मूवी दिवाली 2026 पे हिट करने वाली है थिएटर्स पर। ट्रेलर लॉन्च की इस ग्लोबल हाइप ने अभी से ही माहौल सेट कर दिया है। तो दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, क्या रामायण ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी? खबर जानने के लिए सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

चलो दोस्तों, अब आते हैं हमारे रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन पर। बॉस कार्तिक ने अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया है और इस ग्रैंड विन के तुरंत बाद हमारे बॉय कहीं पार्टी करने नहीं गए, बल्कि सीधा अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचा महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन, उज्जैन में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने। टॉक अबाउट स्टेइंग ग्राउंडेड, राइट, रेस्पेक्ट फॉर कार्तिक। और जब बात ग्रैंड लिविंग की हो रही है तो हमारे ओरिजिनल एक्शन किंग जॉन अब्राहम पीछे कैसे रहे। जॉन ने अभी अभी मुंबई के पोस बांद्रा एरिया में खरीदा है एक मैसिव 84 करोड़ का बंगलो। दोस्तों 2026 में बी टाउन सेलेब्स के रियल स्टेट्स मूव्स देखते देख के लगता है ट्रॉपी होम्स का नया ट्रेंड सेट हो गया है। जॉन भाई, हमें भी कभी हाउस वार्मिंग पार्टी में बुलाना।

अच्छा दोस्तों बताओ, ऑल इज वेल सुन के दिमाग में क्या आता है? कॉलेज लाइफ, दोस्ती या रेंचो? होल्ड ऑन टू योर हर्ट्स गाइस, एनएच स्टूडियोज ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इंडियन सिनेमा की अल्टीमेट मास्टरपीस थ्री इडियट्स सितंबर 2026 में थिएटर्स में ग्रैंड री रिलीज होने जा रही है। और टाइमिंग देखो बॉस, टीचर्स डे वीक पे मूवी री रिलीज हो रही है। तो अगर अपने आलू समोसा खाते हुए हॉस्टल या दोस्तों के साथ ये मूवी मल्टीप्लेक्स में मिस की तो वापस रेंचो फरहान और राजू के साथ हंसने और रोने का चांस गया। तो दोस्तों ये थे आज के बॉलीवुड के सबसे बड़े सबसे स्पाइसी अपडेट्स। रामायण की कॉमिक कॉन हाइप, कार्तिक का उज्जैन विजिट, जॉन का नया पैलेस और थ्री इडियट की ग्रैंड रिटर्न। आपको आज की कौन सी अपडेट सबसे जबरदस्त लगी मुझे जरूर बताना। अब वक्त आ गया है हमारे इस शो में एक बेहतरीन गीत सुनने का। लीजिए दोस्तों पेस है एस किंग की आवाज में और सुनील चौहान की सुरीली आवाज में फ्रॉम द फिल्म दम मारो दम, ओनली ऑन अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। एंजॉय द सॉन्ग गाइस।

0: और दोस्तों इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ 2 जुलाई मनी सा 2 तारीख बुधवार इरुमा के वांछो साय का हवांग वंगना हवांग का हो पाई फाले मंचुई यामी खमे External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar ani Philippines to Manila Honuima East Asia Summit ya ASEAN Regional Forum Meetings ni to apokke kato chi ningke Chinese counterpart Wang Ji Pai apongle Hayama Dr. Jaishankar e Bilateral Cooperation Hanpak Mahasat Longripong to Tumailingo Koti Mai Ai Vaila Vankama Habachu India China ni relations Mai ke Thangwai Levanle Chie nokani bama hale ajingating le tumai le atata to mongong tai tamtui teke boma tale tale ke nak tai le ajung ajang ngale ngoko ti mai vai le chu wan le rangwat ti chongke e mani makange Arunachal Pradesh anke district aga to renu ma poke boma e ruan ke tichan e state anke khanak nu lakta jat punyi aku to jau pole le officials ka holai ma phale State Emergency Operation Center ka homa ayang ole irun ke tichane administrative circles a rock jau omle siang pabum pare west kameng kamle boma lower siang district tole poko boma siang district ma kebang circle khang ke kalek ting to chu u le jau chongna pabum pare ma chu balijan hiya taraso ni ma West coming to Dirang Circle kha angke listing kamle to Raga Circle kha angke jada ting antole lower siang to Likabali Circle kha angke jipu ting male renu mchongle aya ka rangpong tichan molen ma khanak mihwak anat mangma mihwak chaku e bot kap ke boma mihwak ani samana Ministry of Information and Broadcasting mani digital satmot manke tingha to chu na lai le pongwang le ke gems of India challenge le ke ring le lai le webs OTT ma my webs platform ma ring ka haja challenge ma tata he machi machi district to ke shon phat sai ka le videos ma ring la le ko chakai halake videos august tam khange saban atakap le minute tam khanga aram kap le ring la le webs ott platform anke my web section to ko chakai haya pilot phase khama andaman and nicobar island arunachal pradesh chandigarh dadra and nagar haveli daman and diu goa boma ladakh honui le omai haya malak ke tham angun district level award khama district to ke mihwak cha pongang jat jat punyi ban pong state level awards lakani boma national awards ma lakgal ko ai ministry haya motli chaile state ya union territories le pangnu kha wai omle ko ai le chu hole iponge mokle ngoke electoral rolls special intensive revision SIR khama election commission of india apan ke tema Tawang district toke Lumla ST, Tawang ST boma Mukto ST le Assembly Consensi Aram Draft Electoral Rolls manyi ringla lai le Haya Draft Electoral Rolls Hunganang pang ewe nakap ko le District Election Officer DEO Office Concerned Electoral Registration Officers BEROs Assistant Electoral Registration Officers AEROs boma Boot level officers, BLOs, office tole, pangnu khatwe bangai. Haya draft roll tema. Tawang district ma haya assembly consensi aram bama, electors bu. Laka yadbanani honi sanat boma, shiko electors yadban aram honi, puli achat le. Pangnu yatsaga hoga banani jaile. Tawang tuke Department of Horticulture e manrai mi pan namai ko le, mani. Pong Ali Ankabama training program atujale state government's mushroom mission satmot khama hale atu jake to kitfel blocks anke manrami punibana kujo hakle hayama district horticulture officer कोंचो ग्यासो ए मशरूम मिशन ले टेमहान पक मा रिंगले अलाई पोल के बामा गाय लेवन के बोमा मानराय मि थम फैचु मा का खोम का फन ना मै आंग मुंजान अचक ले कप के रोंग मा हले के साइंटिफिक कॉलम मा मक्कोला काले इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ए पापुम परे ओमला ले अरुणाचल प्रदेश अंके डिस्ट्रिक्ट बनराम हान पक मा येलो एलर्ट का फाले हाइया डिस्ट्रिक्ट बुमा रंग सवाल लवे चंगते बांग्लादेश तो ढाका मा अटु जाके साउथ एशियन सेनो कराटे चैंपियनशिप 2026 मा मेडल्स ले अरुणाचली कराटे कास्ट ख्योडा तालिक हिया जोनी मंख्या निए स्टेटमेंट यकमाइले हले ख्योडा तालिक ए टीम काटा मा गोल्ड अंतुले जोनी मंख्या ए सिल्वर मेडल्स अनिले लले अरुणाचल प्रदेश मन्याक अमाइले हललत के कोमा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए हया कराटे कास नीतो मई पुलफुमले हाबोमा हॉकी इंडिया ए ऑगस्ट बनगा खंगे चबन कपले बेल्जियम हिया नीदरलैंड्स नीतो अटु अजा अंके एफआईएच वर्ल्ड कप हानपकमा मिवक चा क्याकदो वलंगाइले इंडियन साइड मा हले एस डिफेंडर बोमचू ड्रेक फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह मा अपाले हकै वेटरन मिडफील्डर मनप्रीत सिंह मा होंजे पंगवे अक्षकते चंगले हले गोलकीपिंग डिपार्टमेंट मा मोहित एचएस हेया सूरज करकेरा नी बोमा डिफेंसिव यूनिट खामा

0: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे ईद उमिस में श्रोताओं का समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में एक बार फिर से हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता लीजा प्रस्तुत है ईद उमिशी में श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर आचला पुचे जान हलु इन्नी लियुलिनी एतानिसी ईद उमिशी आहोला कीजी दरगालंबो। External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar ne Chinese Foreign Minister Wang Yi me ona Philippines maji Manila atikone East Asian Summit done ASEAN Regional Forum meeting akaga mane chorga gane India China ati pahima phu akhawachi poachi jaga hi bada ahoga animi ayog mane Arunachal Pradesh maji Siang Papumpare West Kameng Kamle done Lower Siang District Mangama tando Burugada Ahoga, Siang District Machi, Kebang Circle, Kalek Atiko, Machi, Dagamaho, Papumpara District Machi, Balizan, Taraso Circle, Atika Machi, Pakupara, Animi, Ayogame, Ehayabada Ahoga, Kamle District, Raga Circle Machi, Yada Atiko, West Kameng District, Dirang Circle Machi, Lis Atiko Edone, Lower Siang District, Dikabali Circle Machi, Jipu Atika Mabu, Buruge me ayon butando e haya bada ahoga atiko shoma machi nosha ajia arodala ne INB ministry me puni webs OTT machi my webs kokomane James of India emaga aipaga bada ahoga district mamachi bahachi ta judone ekisa arunda thopuma ajita chila kele mili mane kaso mili mal liba nosha he my webs platform mane hagjina laga no sha he iga pela puchi ela mu machi ne jasun khe machi ne liba hate jiga ma ho e hando chi emaga ma andaman done nicobar island arunachal pradesh chandigarh dadra done nagar haveli daman done diu goa e done ladakh machi me a ma ema bijiga da la hoga district la emaga ma

तो दोस्तों ये था इन बीस में श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रून एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। और अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से हिंदी फिल्म सॉन्ग के साथ।

तो श्रोता दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। और दोस्तों देखते ही देखते वक्त कितना जल्दी निकल गया, हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:18, यानी अब वक्त हो चला है मेरे सेकेंड ट्रांसमिशन यानी दूसरी प्रसारण सभा को यही पे रैप अप करने का। आज आप सभी के साथ ये दूसरा सफर बहुत ही कमाल का रहा, पर पिक्चर अभी बाकी नहीं, पर दोस्तों पर पिक्चर अभी बाकी है। माइक्रोफोन्स बिल्कुल गर्म है और वाइब अगले लेवल पे जाने वाली है, क्योंकि मेरे बाद आने वाले हैं आप सबका चहेते, आप सबके फेवरेट आरजे आतावांगसु एके आरजे नोरा। जी हाँ दोस्तों, थर्ड ट्रांसमिशन लेकर आ रहे हैं आतावांगसु, तो अपने रेडियो को स्विच करने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। उनका एनर्जेटिक अंदाज और सुपर हिट प्लेलिस्ट रेडी है आपकी शाम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। तो मैं चलता हूँ, पर आप कहीं मत जाना, स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग और एंजॉय कीजिए द नेक्स्ट ट्रांसमिशन विद आरजे आतावांगसु। लेकिन आप सबको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और इंजीनियर ऑन ड्यूटी पे थे एचएम ब्यूसन। तो अब मुझे यानी आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार। और दोस्तों एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: आकाशवाणी के ईटानगर के केंद्र से तानसा श्रोताओं का समाचार सुन रहे थे। आप सभी का स्वागत करते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कहते हैं हर नई शाम अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नई मुस्कान और कुछ नया सीखने का अवसर लेकर आती है, इसलिए हर पल का स्वागत पूरे दिल से करें। तो दोस्तों, आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज की तीसरी प्रसारण सभा में मैं यानी आप सभी की अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी आपका दिल से स्वागत करती हूं। इससे पहले कि हम तीसरी प्रसारण सभा को आगे ले जाएं, हमारे द्वितीय प्रसारण सभा के जो आरजे हैं, आरजे दामिनानश का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अब स्टूडियो की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। दोस्तों, आज के इस तीसरी प्रसारण सभा में मेरे साथ है प्रसारण अधिकारी गैर ऐते तथा तकनीकी अभियंता श्री ताना आतुम, जिनके सहयोग से यह प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। दोस्तों, शाम का यह खूबसूरत सफर अब शुरू हो चुका है और अगले कुछ मिनटों तक या कुछ घंटों तक हम साथ रहेंगे। अपने प्रदेश की ताजा तरीन खबरें, इतिहास के सुनहरे पन्नों, जिंदगी को बेहतर बनाने की वाली छोटी छोटी उपयोगी बातों, एक प्रेरक कहानी और बेहतरीन संगीत के साथ हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे गुड इवनिंग ईटानगर के साथ। तो आइए, मुस्कुराइए, सुकून से बैठिए और शुरू करते हैं आज का यह पहला कार्यक्रम तीसरे प्रसारण सभा की, यानी कि गुड इवनिंग ईटानगर।
1: Good evening, Itanagar.

तो सफर की शुरुआत हम करेंगे आज की प्रमुख स्थानीय समाचार सुर्खियों से। ईटानगर स्थित राजभवन के बाहर आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी एपीसीसी ने धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने नई दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं और नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की हिरासत का विरोध किया। राज्य सरकार ने ईटानगर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शनों के लिए एक स्थायी प्रदर्शन स्थल चिन्हित करने हेतु समिति का गठन किया है। इस पहल का ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने स्वागत किया है। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के बाद निर्वाचन आयोग ने राज्य की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। इस प्रक्रिया में लगभग 1,69,000 से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 7,18,000 से ज्यादा दर्ज की गई है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 20 अगस्त की निर्धारित की गई है। हाल के फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से प्रभावित ऊंचाई वाले दूरदराज के जिलों में राहत एवं पुनर्वास कार्य लगातार जारी है। प्रशासन आवश्यक सेवाओं को सामान्य बनाने में जुटा हुआ है। नमसाई जिले के लाल पहाड़ फायरिंग मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध जो एक मारुति सुजुकी वैन वेगनार का चालक बताया गया है को गिरफ्तार किया है। मामले की आगे की जांच जारी है। खबरों में आगे है, अरुणाचल प्रदेश के तादम डुपित ने राज्य स्तरीय ओपन फेडरेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। वहीं दक्षिण एशियाई सीनियर कराटे चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। ख्योदा तालिक ने स्वर्ण पदक तथा जोनी मांखिया ने दो रजत पदक अर्जित कर प्रदेश का नाम गौरव बढ़ाया। ये थी आज की प्रमुख स्थानीय समाचार सुर्खियां। श्रोता दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि आप मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ बने हुए हैं आकाशवाणी के एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर, और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग ईटानगर, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरा कार्यक्रम। हम बढ़े इतिहास के पन्नों की तरफ, उससे पहले लीजिए सुनिए एक प्यारा सा संगीत।

आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा गीत अभिजीत की आवाज में ये खूबसूरत गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इतिहास के पन्नों से। जी हाँ दोस्तों, अब समय है इतिहास के उन पन्नों को पलटने का जहां कुछ तारीखें हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। और आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई में भी कुछ ऐसे तारीखें हैं जो अमर हो गई हैं हमारे इतिहास के पन्नों में। 22 जुलाई 1947 आज ही के दिन भारत की संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपनाया था। यह तिरंगा हमारी आजादी, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। 22 जुलाई 2009 आज ही के दिन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत का जलावतरण किया गया, जिसने देश की सामरिक क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। दोस्तों 22 जुलाई 1933 प्रसिद्ध अमेरिकी वैमानिक वाइली पोस्ट ने अकेले विमान उड़ाकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का ऐतिहासिक कारनामा पूरा किया। दोस्तों इतिहास हमें यही सिखाता है कि बड़े सपनों को साकार करने के लिए साहस, धैर्य और निरंतर प्रयास सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसलिए कभी कभार हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लेना बहुत जरूरी होता है। पता नहीं आज के कौन से समस्या का समाधान उन पन्नों में मिल जाए। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं गुड इवनिंग ईटानगर में एक और खूबसूरत गीत की तरफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है आकाशवाणी का RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ RNFM एक ऐसा चैनल जहां आपको देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ साथ लाइफ हैक्स, लाइफ लेसन, दिल की बातें और कई सारी किस्से, कहानियां और खूबसूरत गीत जो हमारे जिंदगी का हिस्सा है वो सुनने को मिलता है। इसीलिए मैं कहती हूं हमारा चैनल इन्फोटेनमेंट का चैनल है। जी हाँ, आप बने हुए हमारे साथ क्योंकि आपको मिलेगा इन्फोटेनमेंट यानी कि एंटरटेनमेंट भी और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी। चलिए इन्फॉर्मेशन के बाद चलते हैं गीतों की तरफ।

0: विशाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में फिल्म जलेबी का ये खूबसूरत गीत। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी को आसान बनाने वाली छोटी छोटी बातें। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हम शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग माली हर रोज अपने बगीचे के सभी पौधों को बराबर प्यार से पानी देता था। कुछ पौधे जल्दी खिल उठे, जबकि कुछ लंबे समय तक वैसे ही दिखाई देते रहे। एक दिन किसी ने पूछा, जब कुछ पौधे बढ़ ही नहीं रहे तो आप उन पर इतना समय क्यों देते हैं? तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जो जड़ें मजबूत बन रही होती है उनका विकास अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन यही पौधे आगे चलकर सबसे मजबूत बनते हैं। दोस्तों, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सच्ची मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसीलिए कभी कभार मेहनत करते करते हमें ऐसा लगता है कि कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा, इसलिए हम काम को बीच में छोड़ देते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसके लिए मेहनत भी थोड़ा ज्यादा लगता है और जो आउटकम है वो भी धीरे धीरे दिखता है। दोस्तों, साथ ही साथ इस बड़े लाइफ लेसन के बाद चलते हैं आज का रिलेशनशिप टिप। रिश्ते समय और विश्वास से बनते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हर दिन आपने किसी अपने से बस 2 मिनट दिल से बात कर लीजिए, क्योंकि आजकल के जमाने में सबसे महंगा तोहफा सोना चांदी हीरा मोती घर मकान नहीं बल्कि वक्त हो गया है। इसलिए दोस्तों, अपने अपनों को बस 2 मिनट दिल से बात करने का तोहफा दे दीजिए। उनकी बात ध्यान से सुनिए, उनकी छोटी सी कोशिश की भी तारीफ कीजिए और जब भी मौका मिले धन्यवाद, मुझे तुम पर भरोसा है जैसे शब्द जरूर बोलिए। याद रखिए, जहां सम्मान भरोसा और संवाद होता है वही रिश्ते उम्र भर मुस्कुराते रहते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम तो यहीं पे समाप्त होता है, यानी कि गुड इवनिंग ईटानगर यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन सफर अभी शुरू हुआ है, तो बने रहे आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप हिंदी, अंग्रेजी तथा नोक्ते भाषा में समाचार सुन पाएंगे।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में नियमन के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार से बनी बाढ़ की स्थिति ने राज्य के 5 जिलों को प्रभावित किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर कार्यक्रम के तहत अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित। अपर सुबनसिरी जिले के निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा एसआईआर 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची 21 जुलाई को प्रकाशित की गई। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक निर्धारित। अरुणाचल प्रदेश के कराटेका ख्योदा तालिका और जोनी मांख्या ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई सीनियर कराटे चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र से पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा है कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा है कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद के में शामिल नहीं होना चाहते।
2: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा

0: उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्र हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और छात्र विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के सी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों को विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू की। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
2: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चल।
1: अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार से बनी बाढ़ की स्थिति ने राज्य के 5 जिलों को प्रभावित किया है। अधिकारियों के अनुसार जारी मॉनसून के कारण अब तक पूरे राज्य में लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार सियांग, पपुमपारे, वेस्ट कामेंग, कमले और लोअर सियांग जिलों में बाढ़ तथा वर्षा से जुड़ी नई घटनाएं सामने आई है, जिसके 6 प्रशासनिक सर्कल प्रभावित हुए हैं। सियांग जिले के केबांग सर्कल के कालक गांव में अचानक आई बाढ़ से जलभराव हुआ। पापुमपारे जिले में भारी बारिश के कारण बालीजान तथा तारासो गांव प्रभावित हुए। इसके अलावा वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग सर्कल के लेश गांव, कामले जिले का रागा सर्कल के यादा तथा लोअर सियांग जिले के लिकावाली सर्कल के जीपू गांव में भी बारिश से संबंधित नुकसान की खबरें सामने आई हैं। राज्य में जारी बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 29 लोग घायल हुए हैं जबकि 2 अन्य लोग अभी भी लापता है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों अपर सियांग, ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली के साथ सियांग के लिए छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट, साथ ही ईस्ट कमिंग, अंजाव, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कार्यक्रम के तहत अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार तवांग जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों लुमला, तवांग और मुक्तो की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। ये प्रारूप मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी DEO, संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी AERO तथा नामित बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO के कार्य लयों में आम जनता के लिए अवलोकन के लिए उपलब्ध है। प्रकाशित प्रारूप सूची के अनुसार तवांग जिले में कल 25,512 मतदाता हैं, जिनमें 12,227 पुरुष एवं 13,225 महिला मतदाता 3 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची 21 जुलाई को प्रकाशित की गई है। आम नागरिक और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO कार्यालयों में इसका निरीक्षण कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान नए आवेदन भी जमा किए जा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा। मतदाता से संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन भरने के लिए अपने बूथ स्तरीय अधिकारी BLO से संपर्क करने अथवा ECINET ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के कराटेका ख्योदात अली और जॉनी मांख्या ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई सीनियर कराटे चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। ख्योदात अली ने टीम काटा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि जॉनी मांख्या ने 2 रजत पदक

0: नाम किए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस उपलब्धि को अरुणाचल प्रदेश के लिए स्वर्णिम क्षण बताते हुए दोनों कराटेकास को उनकी शानदार सफलता पर बधाई दी है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 31 हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोल।
0: भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कादम्बा नौसेना बेस पर माहिर श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल किया है। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन की आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आत्मनिर्भर भारत।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रिया बादो। The Indian Navy inducted the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahi-class INS Malwan at Karwar INS Kadamba Naval Base in Karnataka today. Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Air Staff, was the chief guest at the ceremony. Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, representatives from Cochin Shipyard Limited, senior naval officers and other guests were present on this occasion. INS Malwan is second of the 8 anti-submarine warfare shallow water craft being constructed by Cochin Shipyard Limited with over 80% indigenous content. Indian Navy has commissioned the 7th warship this year and at least 12 more are to follow. Speaking on this occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh appreciated the progress made by Indian Navy towards Atmanirbhar Bharat. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today participated in Quad Foreign Ministers meeting at Manila in Philippines. In a joint statement, India, Japan, Australia and the United States reaffirmed the commitment to strengthen a free and open Indo-Pacific and unwavering support for Asian unity and centrality. During the meeting, they focused on regional challenges and opportunities to support the Asian outlook on the Indo-Pacific. Key discussion areas include maritime and transnational security, economic prosperity, critical and emerging technologies and emergency response. They are united in the conviction that peace and stability in the Indo-Pacific maritime domain underpin the security and prosperity of the region. On the sidelines of the meeting, Dr. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio. The minister said that the meeting focused on areas which are priority for the India-U.S. comprehensive global strategic partnership, including trade, tariffs, energy, defense security, critical minerals, and artificial intelligence. Dr. Jaishankar also said they exchanged quick perspectives on regional, global, and multilateral issues of mutual interest. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains. In his opening remarks at Asian Post-Ministerial Conference with India 2026 in Manila, Philippines today, he said that energy, food and health security can no longer be taken for granted. He said that both India and Asian are optimistic about their prospects and therefore the focus should be on opportunities even while addressing challenges. Defence Minister Rajnath Singh has stated that the first ever tri-services all-women expedition Samudra Pradakshina onboard IASV Trivani will not only circumnavigated the earth but also made crores of Indians proud with this exceptional feat. He virtually flagged in the Samudra Pradakshina expedition on board IASV Trivani. Highlighting the crew's diplomatic visit, Mr. Singh said they acted as ambassadors of India's culture.

0: culture and democratic values, strengthening the country's soft power. He hailed IASV Triveni as a living example of Atmanirbhar Bharat and of India's innovation capabilities and confidence. The United States has launched strikes on Iran for the 11th consecutive night as Tehran warned the U.S. against targeting its nuclear facilities. The U.S. Central Command, CENTCOM, has said the strikes were conducted against Iran to further degrade Tehran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. CENTCOM targeted military operation centers, maritime capabilities, aircraft hangars, drone storage facilities, and military logistic infrastructure. Earlier, Iran had attacked more than 30 commercial vessels transiting the strategic waterway over the past 3 months, describing the attacks as unwarranted and saying they had endangered hundreds of civilian mariners and undermined freedom of navigation. In Sikkim, search and rescue operation is on for the third day today to evacuate people trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardang in Namchi district. Officials said that 12 bodies have been recovered so far and 13 people are believed to be trapped inside the ill-fated tunnel. Governor Om Prakash Mathur and Chief Minister Prem Singh Tamangole visited the site yesterday. In Assam, the flood situation remains critical with 16 districts affected by the deluge. 21 more people have been reported to have lost their lives in the flood across the state, taking the toll to 31 till now. India Meteorological Department has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over parts of Gujarat, parts of Maharashtra, Konkan and Goa till tomorrow. That is all in this news bulletin. Namaskar.
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता लीजा प्रस्तुत है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: मागा ना रंजा ठासन आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ बा रंजा वन बांगा बाजी संपदा ने रियन नानोक ते खो बच्चों तारन ठेजा जुलाई जंग रोगनी वन्नी तारीख बुध बच्चा खो बच्चों को यह जंग फंता जाऊंगा अरे खो बट है चोतर मंगन Minister Dr. S. Jaishankar Thaja, Philippines, wa Manila Nang, East Asia Summit, le Asian Regional Forum, Ngo Thunta Ko, Chinese Te Wang Yi Dam Nang, Chumin Vajo. Adi Kong Yin Chu Thoko Ta Ko, Dr. Jaishankar Ma, Akhan Ma, Bilateral Cooperation Rang, Jadri Nang, Hanti Pa Fundamental Requisite Jo, Male, India le China Relation Nang, Gradual Normalization Rang, Chu Thoko Vajo. Adi Ko Stable le Cooperative Relationship pa mutual respect, mutual interest le, mutual sensitivity ne ma ba ta dawa minjo nga manjo, diak ni ni manjo, pute ki nga ma minjo thoko ba jo. Arunachal Pradesh nang maja ma rangpat pa ma, district banga nang jo maja lumega. Adika official ko ba jin ko, state nang ara rangpat ha ko, 1.49 lakh minyan hai jo, cham wakai ka nga manjo, jo thoko ega. Adiga State Emergency Operation Center hi junko Siang Papumpare West Kameng Kamle le Lower Siang District wa Jolum le Rangpat ma humpoti chi se khobar thei jo wa jonga ma jo chotho koi ka Adiga Papumpare nam Balijan le Taraso ha danang Rangdong mu pata pama ta wale West Kameng wa Dirang Circle wa Lisha dang Kamle wa Yada ha dang le Lower Siang wa Likhabuli Circle khan wa Jipu ha dang he nam min Rangpat ma humpoti chiset khobar thei jo wajo. Adiga Jolum le Harut pama wai ngik minyan hei lari ta le. Rokni wai khu hei mak sak re ka le wani pa tu nang min machu lamka jo nga ma jo jo thoko ega. Ministry of Information and Broadcasting hei ma maja grassroots wa digital creators se promote, nurture le identify huan rang Gems of India Challenge hei pilot phase pa lucid wako wajo. Adiga Waves OTT khan ko My Waves platform ko challenge ho nika ko. Mama district wa cultural heritage niyama rang le ajachet ngimkong pa khe sokla ma video ring cha hun la maja roe ka. Adiga part kap hun te hima minute te pa ma minute ram video hi August jang vandhatarik pa ma rogra vandhatarik to ko My Waves section nga ma Waves OTT platform ko jo ma ta ho nang jang. Adiga Pilot phase ko Andaman and Nicobar Island, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu, Goa le Ladakh he eko maja. Adigar program ko district he ko wa Rokni created se nang Rok Banga Hajatru award, state level nang Lakni award le National award pa Lak Banga mun edang ajo nga maja chotho ko ega. अधिकार प्रोग्राम पर मिनिस्ट्री में मत्तो स्टेट्स ले यूनियन टेरिटरीज ना पायलट पर सक्सेस जिम को एक्सपांड होने जाऊंगा मैं मिंचो ठोको बाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल न्याब्रांग लो से निकाले इलेक्ट्रल रोल से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 16 का खन को तावांग डिस्ट्रिक्ट वनरम असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज 1 लुमला एसटी 2 तावांग एसटी ले वनरम मुक्टो एसटी है रंग ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रोल पर लो से को बाजाऊं अधिकार ड्राफ्ट पर पब्लिक इंस्पेक्शन रंग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीवीओ ऑफिस को जाओ छेने का अधिकार ड्राफ्ट रोल लोसे देखा जिनको तावांग डिस्ट्रिक्ट नंग रोकने वन बंगा हाजत नाले चा बंगा नाले छिवानी इलेक्ट्रोस तोंगले अरे कबा छी हाजत नी चा नी नाले रोकने वाई नीक पर डलाले छी हाजत रम चा नी नाले रोक सेट वा बंगा है बिहेक जाओंगा मजा चोठो कोएगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD है मा अरुणाचल प्रदेश व छिवानम डिस्ट्रिक्ट से रंग येलो अलर्ट पर जाओ लोसे कोएगा अधिकार डिस्ट्रिक्ट है नंग पुंग अपात दम नंग रंग दंग तालिये बजाऊं आम जाचु ठोकोएगा। बांग्लादेश व ढाका नंग साउथ एशिया सीनियर कराटे चैंपियनशिप 2026 खेल लोमता को अरुणाचल के ख्योदा तालिक ले जोनी मंख्यानी में स्टेट रंग मेडल पर जीन बजाऊं। अधिक ख्योदा तालिक में टीम काता गोल्ड जीन वाले जोनी मंख्या में वन्नी सिल्वर मेडल पर जीन बजाऊं आम जाचु जटुकेगा। अधिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में अरे अचीवमेंट पर गोल्डन होम में नाम चोटो को दम को कराते लूम देवानी को कांग्रेचुलेट पर होन बजाओ बेल्जियम ले नेदरलैंड्स नंग अगस्त जंग छियन बंगा पमा रोग रम तारिक तक को FIH वर्ल्ड कप डमिंग करंग हॉकी इंडिया हेमा रोगनी मेंबर्स दलाहे टीम पर लुसिक को बजाओ अधिक इंडिया ने पर इस डिफेंडर ले ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह मा इस न जाओ अधिक गोल कीपिंग डिपार्टमेंट को मोहित HS ले सूरज करकेरा एडंगाले डिफेंसिव यूनिट को जर्मनप्रीत सिंह कैप्टन हरमनप्रीत अमित रोहिदास जुगराज सिंह संजय सुमित ले यशदीप शिवज से इडंगा जाओ अधिक इंडिया है कैंपेन पर अगस्त जंग छिवे नीत ले छी बनेंगे को इंग्लैंड ले रान पाकिस्तान दमनंग अगस्त जंग छिवे ने खुई तारीख लो मा को वेल्स दमनंग अगस्त जंग छिवे बा तारीख लो मा जंगा मा जो चोटो कोएगा ते जाना नु के खबर तो को जो लाथोन मंगता

हिंदी अंग्रेजी और नौक्ते श्रोताओं के समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर। और आज सफर में मैं हूं आप सबके साथ आरजे नूरी। दोस्तों, वक्त हो चला है आप सब को लिए चलने का एक सुनहरे सफर पर, और कार्यक्रम का नाम है, जैसे कि आप सभी को, बहुत सारे हमारे जो श्रोता है जो हमें रोज सुनते हैं उनको पता है कि 5:05 से हम लेकर चलते हैं इवनिंग ड्राइव पर। जी हाँ, कार्यक्रम है इवनिंग ड्राइव।

0: समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।
1: तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ आप सबके साथ चलने को इवनिंग ड्राइव पे। जी हाँ, इवनिंग ड्राइव में हम आपके साथ करेंगे दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। जी हाँ, हर गीत हमारी कहानी होगी, आपकी कहानी होगी, आपके जो इमोशंस हैं वो बयां होंगे, मेरे इमोशंस बयां होंगे। क्योंकि जब भी हम हिंदी गाने सुनते हैं या फिल्मी गाने सुनते हैं, हम किस लिए सुनते हैं? क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हिंदी फिल्मी गाने केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। और ये हर बच्चा बच्चा यानी कि हिंदी फिल्मी गानों के प्रेमी बोलते हैं। दोस्तों शाम का सुहाना वक्त है और दिन भर के भागदौड़ के बाद कुछ पल ठहरने का, मुस्कुराने का और अपने दिल की आवाज सुनने का होता है। कितना भागेंगे, कितना दौड़ेंगे, कितना हम दौलत के पीछे, नाम के पीछे भागेंगे, कितना डेडलाइंस। जिंदगी अगर इस तरह से जिएंगे ना तो वक्त से पहले हम बूढ़े नजर आने लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा वक्त अपने साथ बिताने का भी है। इसलिए हम लेकर आते हैं इवनिंग ड्राइव, जहां हम ऐसे ड्राइव पर चलेंगे जहां खूबसूरत गाने होंगे, हमारा और आपका साथ होगा और दिल की बातें होंगी। दोस्तों जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा या सफलता नहीं होती, और ये बात शायद आप भी मानते होंगे दिल ही दिल में। अगर हमारी सबसे बड़ी दौलत पैसा या सफलता नहीं है तो फिर क्या है? ये भी सवाल आपके मन में आता है ना? मेरे लिए तो वो लोग होते हैं जो हर मोड़ पर आपका साथ और आपका हाथ थामे खड़े रहते हैं। मुश्किल पलों में, मुश्किल वक्त में जो आपके साथ होते हैं, जो बेझिझक आपके साथ खड़े होते हैं, अगर उनको पता हो कि आप सच हैं और आप सच के साथ खड़े हो, तो ये होती है जिंदगी भर की कमाई। जी हाँ, सच्चे दोस्त। अगर आपके भी दोस्त हैं ऐसे कोई, तो जरूर उसको बताइएगा कि आपके लिए वो कितने बड़ी दौलत है, कितना बड़ा उनको लगता है कि सफलता मिली है जिंदगी में उनको पाकर। दोस्तों दोस्ती वो रिश्ता है जो बिना किसी शर्त के निभाया जाता है। प्यार वो एहसास है जो दिलों को जोड़ता है और दूरियों को नहीं। और आपसी साझेदारी वही ताकत है जो किसी भी परिवार, समाज और देश को मजबूत बनाती है। इसलिए अपनी साझेदारी, अपने दोस्त, अपने अपनों को अपना सब कुछ मानिए। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। चलिए बातें तो होती रहेंगी आप सबके साथ, क्योंकि हम आए ही इसलिए कि कर सके दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में आपने सुना ये खूबसूरत गीत श्रेया घोषाल और बेनी दयाल की आवाजों में फिल्म युवराज से। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि मैं आप सबकी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी। और शाम का ये सुहाना समय मैं आपके साथ लेकर आई हूं थोड़ा सा सुकून, अपनापन और कुछ खूबसूरत विचार। दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूरज धीरे धीरे ढलता है तब मन भी चाहता है कि कुछ पल अपने लोगों के साथ बिताए जाए, कुछ बातें दिल की जाए और रिश्तों की गर्माहट को महसूस किया जाए। दोस्तों, जिंदगी में हम बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, अच्छी नौकरी, बेहतर भविष्य, सपनों का घर, सफलता और सम्मान, लेकिन अगर हमारे जीवन में दोस्ती, प्यार और अपनेपन का साथ ना हो तो ये सारी उपलब्धियां अधूरी सी लगती है। उम्मीद करती हूं कि इस वक्त जो भी मेरे साथ आकाशवाणी के और एनएफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, आप सभी मेरे साथ जरूर एग्री करेंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान से नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास और भावनाओं के सहारे भी जीता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं होता फिर भी दिल से जुड़ा होता है। एक सच्चा दोस्त हमारी खुशियों में हंसता है और मुश्किल समय में हमारा हाथ थाम लेता है। और प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का एहसास नहीं बल्कि हर रिश्ते में मौजूद वह भावना है जो सम्मान, विश्वास और अपनापन सिखाती है। और आपसी साझेदारी यानी साथ चलने की कला, जब परिवार, मित्र, पड़ोसी और समाज के लोग मिलकर एक दूसरे की बात सुनते हैं, सहयोग करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल

होते हैं तभी जीवन आसान और खूबसूरत बनता है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में हर किसी के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सुनने के लिए बहुत कम लोग और कम समय है। लेकिन याद रखिए, जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, तभी रिश्तों की असली खूबसूरती नजर आती है। और जहां प्यार, भरोसा, साझेदारी होते हैं, वहीं शांति अपने आप चली आती है। किसी ने क्या खूब कहा है, नफरत दीवारें खड़ी करती है और मोहब्बत रास्ते बनाती है। तो हमें तय करना है कि हम दीवार खड़ी करने वाले लोगों में शामिल है या मोहब्बत यानी कि रास्ते बनाने वालों में शामिल है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। जी हाँ, इवनिंग ड्राइव, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और आज के सफर में मैं हूं आप सबके साथ, आप सबकी अपनी RJ नूरी। लीजिए, ज्ञान की बातें तो चलती रहेंगी और आप सबके साथ करने के लिए तो आई हूं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। लीजिए सुनिए अगला दिल की बात।

was the evening drive, जहां हम चलते हैं एक ऐसी गाड़ी में जहां हम आपके साथ करते हैं दिल से दिल की बात और सुनवाते हैं सुकून भरे गीत. दोस्तों, एक छोटी सी मुस्कान, एक प्यार भरा शब्द, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी की मदद कर देना, ये छोटी छोटी बातें हमारे आसपास की दुनिया को और भी सुंदर बना सकती हैं. हम अक्सर सोचते हैं कि शांति केवल बड़े समझौतों या बड़ी बातों से आती है, लेकिन असली शांति तो हमारे घरों से शुरू होती है. जब परिवार में सम्मान हो, दोस्तों में विश्वास हो, पड़ोसियों में सहयोग हो और समाज में भाईचारा हो, तब एक खुशहाल और शांत वातावरण बनता है. और हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश भी अपनी विविधता, अनेक जनजातियों, भाषा और संस्कृतियों के बीच आपसी प्रेम और साझेदारी की सुंदर मिसाल प्रस्तुत करता है. यहाँ की नदियां, पहाड़, वादियां हमें यही संदेश देती है कि अलग अलग होकर भी हम एक साथ रह सकते हैं. तो आइए आज की शाम इवनिंग ड्राइव कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम के साथ, यानी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ एक छोटा सा सलकब ले, किसी की बात ध्यान से सुनेंगे, अपने रिश्तों को समय देंगे, मन मुटाव को बातचीत से दूर करेंगे और अपने आसपास प्यार, सहयोग और शांति का वातावरण बनाएंगे. क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी अच्छा इंसान बन जाना ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है. तो इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ अब समय है एक और प्यारे से गीत का, जो दोस्ती, प्यार और अपनेपन के रंगों को और भी खूबसूरत बना देगा.

0: Hey guys, that was a video from your channel, The Free India. अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है,
1: सुनिए सुनिए सुनिए, कचरा जी, अब जरा संभल के। Attention, Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500.
4: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि हमारे पास कितने लोग हैं, बल्कि यह है कि जब हमें किसी की जरूरत हो तब कितने लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। और यह साथ यूं ही नहीं मिलता, इसके लिए जरूरी है थोड़ा विश्वास, थोड़ा धैर्य और बहुत सारा अपनापन। अगर आपने ये सब दिया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपको वो फल जरूर मिलेगा, एक अच्छे दोस्त के रूप में जो आपके साथ हर हाल में खड़ा रहेगा और आपसे कहेगा, मैं हूं ना, कोई भी तकलीफ हो, मुश्किलें हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम कर लोगे। यही बस इतनी सी जिंदगी में वो मिठास, वो भरोसा, वो यारी, वो दोस्ती जरूरी है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर हमारे सैकड़ों दोस्त होते हैं, लेकिन नसली दोस्त वही है जो आपकी खामोशी भी पढ़ ले। आप कुछ बोले ना, लेकिन उनको समझ में आ जाए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, आपके चेहरे की रंगत देखकर ही उसे पता चल जाए कि आप खुश हो, आप किसी परेशानी में हो या आपको किसी चीज की जरूरत है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसे किसी भी हाल में अपनी जिंदगी से जाने मत दीजिए। वही अपनापन, वही भरोसा, वही विश्वास उनको दीजिए, आपकी जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी। चलिए इसी के साथ सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

दोस्तों, रिश्ते जीतने के लिए तर्क नहीं बल्कि विश्वास चाहिए, यानी कि लॉजिक नहीं, एक विश्वास, एक भरोसा चाहिए। और दिलों को जोड़ने के लिए शब्द नहीं यानी कि संवेदनाएं चाहिए, यानी कि सैम्पथी, कॉम्पेशन हो, सेंसिटिविटी हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा। अगर आज किसी अपने से बात हुए कई दिन हो गए हो, तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्हें एक फोन जरूर कीजिएगा, यानी कि

साथ बातें करते करते और दिल से दिल की बातें करते करते अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा दोस्त याद आ गया हो, या कोई ऐसा अपना, या कोई ऐसा पड़ोसी, या कोई ऐसा क्लासमेट जो सालों से जिनसे आपकी कोई बात नहीं हुई हो लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा रहा है, तो उनसे बस फोन पर एक हेलो हो जाए या एक मैसेज हो जाए कि आप कैसे हो। हो सकता है कि किसी का पूरा दिन ही बदल दे। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेज है, हर किसी को आगे निकलने की जल्दी है, लेकिन इस दौर में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनों से ही दूर चले जाएं। याद रखिए, काम फिर से मिल सकता है, मौका फिर आ सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ते टूट जाए तो उन्हें जोड़ने में बरसों लग जाते हैं। इसलिए अपने परिवार के लिए समय निकालिए, दोस्तों का हाल पूछिए, पड़ोसियों से मुस्कुराकर मिलिए। यकीन मानिए, प्यार बांटने से कम नहीं होता बल्कि हर बार बढ़ता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कि हर बार आपसे मिले, मुस्कुराकर मिले, दिल से दिल की बात करते हुए मिले और आपके दिल को सुकून पहुंचाए, ऐसे गीत पहुंचाए आप तक। चलिए, इसी बात के साथ हम लेते हैं एक और गीत और आपको बता दें कि इसी के गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पे समाप्त होगा, लेकिन गीतों का सफर जारी रहेगा मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर। और कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे बैक टू बैक एक फिल्म सॉन्ग जिसमें आपको कोई ब्रेक नहीं लगेगा, ना ही कोई आपको टोकेगा रोकेगा, बस सुकून से आप सुनते रहे कुछ हसीन नगमे। और फिल्म का नाम है इंसाफ और इंसाफ के कुछ हसीन नगमे आप सुन पाएंगे, उससे पहले इवनिंग ड्राइव का ये आखिरी गीत।

मेगा हर्ट्स पर बने रहे, क्योंकि हम करते हैं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। भले ही मैं आपसे कुछ कहूं ना कहूं, लेकिन गाने आपसे जरूर कुछ ना कुछ कहते होंगे। हर एक गाने में कोई ना कोई कहानी आप ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि हिंदी फिल्मी गानों का जादू ऐसा है कि ऐसा लगता है कि हर गाना, हर गीत, हर समय के लिए, हर इमोशन के लिए और हर सिचुएशन के लिए बना होता है, और आप जिस भी सिचुएशन में हो आपके लिए कोई ना कोई गाना जरूर होता है। इसलिए हमें हिंदी फिल्मी गानों से बहुत प्यार है, और आकाशवाणी और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जितने भी गाने हम आपके लिए प्ले करते हैं, उम्मीद के साथ कि आपको जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन गानों से सुकून मिलता है और अपनापन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गीत। हो सकता है कि ये गीत आपके लिए बना हो।

पाएंगे कुछ ही पलों में आदि श्रोताओं का समाचार, क्योंकि हिंदी फिल्मी गानों से ही हम विदा ले रहे हैं, क्योंकि सफर अभी जारी है आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आदि श्रोताओं के समाचार के बाद हम फिर से लौट कर आएंगे ठीक 6:35 पर आज के कलाकार कार्यक्रम के साथ। बस बने रहिए और सोचते रहिए कि आज का खास कलाकार कौन होगा और किन के फिल्मों का गाना आज आप तक पहुंचेगा। तो बने रहिए आकाशवाणी के रेड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंतजार के कुछ पलों बाद ही आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार।

श्रोत दोस्तों, आकाशवाणी के ईटानगर के केंद्र से आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आदि श्रोताओं के समाचार के बाद हम फिर से लौट कर आएंगे आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम आज के कलाकार के साथ। जी हाँ, और आप सोच रहे होंगे कि आज के कलाकार कार्यक्रम में आज का कलाकार कौन होगा, क्योंकि हम जब कलाकार की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में बस यही आता है कि हिंदी फिल्मी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं। जी हाँ, ज्यादातर हम यही सोचते हैं और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि हम जब भी कलाकार सोचते हैं या आज के कलाकार सोचते हैं तो बस हमारे मन में भी यही पिक्चर आता है कि किसी आर्टिस्ट फिल्मी आर्टिस्ट का ही होगा। और आज आप बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं आज के कलाकार कार्यक्रम में एक बेहद ही प्यारी सी आर्टिस्ट की जीवन से रिलेटेड कुछ बातें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी खूबसूरती से कहीं ज्यादा अपने सशक्त अभिनय से यानी कि अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। दोस्तों, आज की हमारी कलाकार है राइमा सेन। अगर राइमा सेन की बात करें तो राइमा सेन का जन्म 11 नवंबर 1979 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम राइमा देव वर्मा है और वे भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी माँ प्रसिद्ध अभिनेत्री मुनमुन सेन और दादी महान अदाकारा सुचित्रा सेन और उनकी बहन अभिनेत्री रिया सेन है। उनके पिता भारत देव वर्मा त्रिपुरा के शाही परिवार से जुड़े थे। दोस्तों, बचपन से ही कला और अभिनय का माहौल मिलने के कारण राइमा ने भी फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म गॉड मदर से की। इसके बाद दमन में उनके अभिनय को सहारा गया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली ऋतुपर्ण घोष की फिल्म चोखेर बाली से, जहां उनके संवेदनशील अभिनय ने समीक्षकों और दर्शकों दोनों का दिल जीत लिया। राइमा सेन ने हिंदी के साथ साथ बंगाली फिल्मों में भी शानदार काम किया है। परिणीता 10, मनोरमा 6 फीट अंडर, नौका डुब्बी, 22वें शो शोबोन, तारीख जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की अलग अलग रंगत दिखाई। दोस्तों, राइमा सेन उन कलाकारों में है जो ग्लैमर से ज्यादा अपने अभिनय और किरदारों की गहराई पर भरोसा करती है। उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार चुने जो दर्शकों के दिलों में अपनी अलग पहचान छोड़ जाए। राइमा सेन की सबसे बड़ी खूबी है उनकी सहजता, सिंप्लिसिटी, सादगी और स्क्रीन पर स्वाभाविक अभिनय। शायद यही वजह कि आज भी वे समान रूप से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करती है, यानी कि पीपल स्टिल एडोर हर एंड लव हर एक्टिंग। तो आइए आज के इस विशेष अवसर पर सुनते हैं राइमा सेन की एक बहुत ही यादगार फिल्म है कुछ दिल ने कहा। इस फिल्म के कुछ अनमोल नगमे बैक टू बैक हम सुनेंगे। पहला ही गीत है उदित नारायण की आवाज में मेरे नींद चुरा ले, और उसके बाद हम सुनेंगे मेरे सोने रब ने अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में, और उसके बाद हम सुनेंगे नजर के सामने उदित नारायण की आवाज में मैं तुझको याद आऊंगा अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों इसी के साथ ही आज के कलाकार में राइमा के जीवन और फिल्मी सफर की छोटी सी झलक यही समाप्त होती है। उनके फिल्म क्या कुछ दिल ने कहा फिल्म के कुछ अनमोल नगमों के साथ अगले अंक में फिर मुलाकात होगी भारतीय सिनेमा के एक और बेहतरीन कलाकार के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति कार्यक्रम आज के कलाकार से। आकाशवाणी के RFM 103.1 MHz पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ करने के लिए दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। दोस्तों 7 बजते ही अब वक्त हो जाएगा सुनने का निशी श्रोताओं का समाचार, तो बने रहे आकाशवाणी के RFM 103.1 MHz पर जहां गीतों के साथ साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें भी आपको मिलेंगी।

दोस्तों, आकाशवाणी के आर एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं आरजे नूरी के साथ और सुन रहे हैं सफर में हिंदी फिल्मी गाने। दोस्तों, कहते हैं कि किसी जगह को सच में जानना हो तो वहां की मिट्टी की खुशबू, लोगों की मुस्कान और उनकी संस्कृति को महसूस कीजिए। और अगर ऐसी किसी जगह की बात हो तो अरुणाचल प्रदेश का नाम सबके जहन में सबसे पहले आता है। उगते सूरज की धरती, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल, कल कल बहती नदियां, रंग बिरंगे त्योहार और 26 से अधिक जनजातियों की अनोखी सांस्कृतिक विरासत, यही तो है हमारा खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, लोगों को लगता है कि दूर दराज नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, कुछ जंगली लोग रहते हैं, सिविलाइजेशन नहीं है, वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है, जंगल में रहते होंगे, खाते पीते क्या होंगे। आज भी कई सारे लोग अरुणाचल के बारे में जानते तो है लेकिन अधूरे से ज्ञान के साथ मिलते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां भाईचारे के साथ मिलते हैं और हर किसी के साथ जय हिंद कहकर मिलते हैं। ये बहुत ही अनोखा तरीका है लोगों से मिलने का। कई प्रदेशों में लोग भगवान का नाम लेकर, अपने इष्ट का नाम लेकर मिलते हैं, जैसे राधे राधे बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पे लोग जय हिंद कहकर मिलते हैं एक दूसरे से। इससे ये भाव प्रतीत होता है, यह भाव लोगों के सामने आता है कि हमें गर्व है भारतीय होने का, हिंदुस्तानी होने का। ये बहुत सहज भाव से आता है, किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने ये नहीं बताया कि ये बोलना है, बस लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वाक्य है जो हमारे अंदर से आता है, यानी कि हमारे खून में बसा हुआ है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, जय हिंद। अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानना हो तो अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज भी एक ऐसी आवाज है, अरुणाचल की अपनी आवाज, जहां आपको जानकारी मिलेगी। कई सारे हमारे कलाकारों के बारे में इस चैनल पर बातचीत होती है, कई सारे ऐसे हमारे जाने माने लेखक हैं, उनको हम इस स्टूडियो पर बुलाते हैं और उनके कार्यों को आप तक पहुंचाते हैं। तो अरुणाचल को जानने का एक जरिया आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज भी है। और इसके साथ साथ इंटरनेट पर भी कई सारे इंफॉर्मेशन आज के जमाने में मौजूद हैं। जो लोग आज भी अरुणाचल को कहते हैं कि क्या वो चीन में है, क्या वो भूटान में है या बर्मा में है, उनको ये बता दूं कि अरुणाचल भारत देश का एक अभिन्न अंग है, जहां के लोग आपसे मिलेंगे जय हिंद कहकर। चलिए, बातें तो होती रहेगी आप सबके साथ, क्योंकि हम तो करने ही आए हैं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस खूबसूरत गीत के बाद कार्यक्रम अरुणाचल में। जी हाँ, आप सुन रहे हैं अरुणाचल, खूबसूरत अरुणाचल, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों, अरुणाचल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि अनुभवों की एक खुली किताब है। अगर आपको रोमांच पसंद है तो मेचुका की वादियां आपका इंतजार कर रही है, और अगर आध्यात्मिक शांति की तलाश है तो तवांग मठ की घंटियों की मधुर ध्वनि मन को सुकून देगी। वही जीरो वैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आपातानी जनजाति की अनूठी जीवन शैली के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां आने वाला हर पर्यटक सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि ढेर सारी यादें भी अपने साथ लेकर जाता है। और जिन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश देखा है उनका कहना है कि अमीर खुसरो के जो लव्स थे या उनके नजर से जो भी लिखा था कि स्वर्ग अगर है तो कश्मीर में है, यानी कि यही है जो भी उन्होंने कहा था, तो हमारे बहुत सारे पर्यटक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अरुणाचल देखा है, वो कहते हैं कि स्वर्ग तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मीठी बोली बोलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। जहां भी लोग मिले

हो सकता था, इसलिए मैंने आपके लिए प्ले किया। दोस्तों गीत के बाद कहते हैं, किसी भी प्रदेश की असली पहचान उनकी संस्कृति होती है, यानी कि संस्कृति वहां की। अरुणाचल प्रदेश में हर जनजाति की अपनी अलग भाषा, पहनावा, लोकगीत, लोक नृत्य और परंपराएं हैं। लोसर, न्योकुम, सोलुंग, द्री, मोपिन, सीडोनी, रे और ओरिया जैसे त्योहार हैं। और ये जो त्योहार है, प्रकृति, भाईचारे और सामूहिक जीवन का उत्सव है। बांस और बेत से बने हस्तशिल्प, हाथों से बुने रंग बिरंगे वस्त्र और स्थानीय व्यंजन यहां की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। यही विविधता अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अनमोल सांस्कृतिक खजाना बनाती है। जहां किसी जमाने में अगर तिरप जिले या लोंगडिंग जिले में जाओ तो आप देखेंगे कि लोग हेड हंटर्स हुआ करते थे। हेड हंटर्स कैसे? ऐसे ही किसी को मार देना उनकी प्रकृति में नहीं था। वे अपने देश की सुरक्षा, अपनी मिट्टी की सुरक्षा के लिए और अपने अपनों की सुरक्षा के लिए वे हेड हंटिंग करते थे। अवशेष आज भी गांव-गांव में लगा हुआ है, आप देख सकेंगे। लेकिन वही लोग जिसे हेड हंटर्स के नाम से जानते हैं, वही लोग आज आप सबको खुले बाहों से, प्यार से मिलने को और अपनी जीवन शैली को आप सबके साथ शेयर करने के लिए उत्सुक है। ऐसा है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, बात अरुणाचल की हो और खूबसूरत गानों को आप तक न पहुंचाएं, ये कैसे हो सकता है? चलिए सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत।

0: तो दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद आपका फिर से स्वागत करती हूँ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणाचल में। दोस्तों, जब भी आप किसी नए स्थान की यात्रा करें, वहां की संस्कृति और प्रकृति का सम्मान जरूर करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें, स्थानीय उत्पाद खरीदे, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करें और पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा दें, क्योंकि जिम्मेदार पर्यटक ही किसी खूबसूरत जगह की खूबसूरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात किसी ने लिखा है। जी हाँ, चाहे आप अरुणाचल आए या अरुणाचल के लोग बाहर जाए, वहां के लोगों की और वहां की संस्कृति की और प्रकृति की जरूर सम्मान होनी चाहिए, ये ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में लोग बिना प्लास्टिक के कहीं नहीं जाते। लेकिन हम कोशिश करेंगे या कोशिश करें कि प्लास्टिक का जो उपयोग है ना, वो कम ही करें। और वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग जो बनाते हैं, जो खाते हैं, उनके साथ उनके रंग में रम जाए। ये करने से क्या होता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपनी प्रकृति को और संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि लोगों, संस्कृतियों और प्रकृति से जुड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है। तो इसलिए जो भी अरुणाचल आए, हमारे साथ हमारे जीवन शैली को अपनाएं, कुछ दिनों के लिए ही सही, और हम जैसे खाते हैं, हम जैसे जीते हैं, वैसे जीने की कोशिश करें, एटलीस्ट ट्राई करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मिलता है वो ऑर्गेनिक है, और जो बाहर से आता है उसमें मिक्स हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग ग्रो करते हैं, यहाँ पे जो बनाते हैं, जो हम अपने खेतों में उगाते हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। तो हमारे देश के दूसरे अलग अलग कोने से जो भी अरुणाचल घूमने के लिए आते हैं, हमारे अरुणाचल की खूबसूरती को जिए, एहसास करें, महसूस करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की छोटी सी यात्रा यानी कि अरुणाचल के बारे में जो भी आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर शेयर किया है, आप ने ही खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश को एक नए नजरे से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर अभी तक आपने अपने राज्य के किसी नए कोने को नहीं देखा है, तो इस बार छुट्टियों में अपने परिवार और दोस्तों के साथ अरुणाचल की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि संस्कृति और आत्मीय मेहमान नवाजी का अनुभव जरूर करें। और अरुणाचल के मेरे प्यारे प्यारे प्रदेश के वासियों, अगर आपने भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा अरुणाचल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं देखा है, तो जरूर देखें और भाईचारे का संदेश लेकर जरूर जाए, और वापस लेकर आए तो अच्छे अनुभवों को जरूर लेकर आए और अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबसे कार्यक्रम अरुणाचल से इजाजत चाहती हूं। लेकिन आपको बता दूं कि कार्यक्रमों का सिलसिला आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जारी रहेगा। हम आपके साथ होंगे रात्रि के 9:30 तक, तो हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें ऐसे सुंदर सुंदर कहानियां, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और मनमोहक गीतों के साथ साथ दिल की बातें। अब वक्त हो चला है आप सबको लिए चलने का, फिर से बैक टू बैक बॉलीवुड सॉन्ग्स के कार्यक्रम की ओर जाने का, तो बने रहिए हमारे साथ।
1: Maruti Suzuki Brezza comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम में, जहाँ होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से, और ये अरुणाचल की अपनी आवाज है, तो बने रहिए। अगला कार्यक्रम, जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, आप सुनेंगे बैक टू बैक बॉलीवुड सॉन्ग्स और फिल्म। मैंने आप सबके लिए जो चुना है वो है हम दो हमारा एक।

0: बैक टू बैक बॉलीवुड के गानों का आनंद उठाने के बाद अब वक्त हो चला है सुनने का अरुणाचली गीतों का संग्रह अपना गीत। बने रहे आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद लीजिए अरुणाचली आधुनिक गीतों का यह गुलदस्ता अपना गीत।
1: नई उम्मीद, नई आशा और अटूट विश्वास के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अतर आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। उम्मीद आप सभी की सलामती की, आशा कुछ और पल आपकी जिंदगी में खुशियां भरने की और विश्वास हर दम आपके साथ जुड़ने का। जी हाँ श्रोताओ, जब भी कार्यक्रम अपना गीत लेकर आती हूँ ये जरूर सोचती हूँ कि आप अपने ही प्रदेश के गीतों को सुनकर कुछ अपनी पुरानी यादें ताजा करते होंगे तो कुछ आज के संगीत पर धुन मिलाते होंगे। और इसी आशा के साथ लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, मेडिको मेंजो की आवाज में ईदू गीत।

तो केपखरी द्वारा गाए गीत आप सुन रहे थे मिजू मिश्मी भाषा में। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत निशी भाषा में, और आवाजें हैं तोको तेनी और यामी लाजी की।

दोस्तों, हमारी सोच, हमारी चाहत और कल्पना की सीमा ही क्या होती है। सोचो, अगर हम एक तितली होती तो क्या करते? बेशक खिले हुए फूलों की क्यारियों में जाते, उनके रंगों के साथ खेलते, रस का आनंद लेते। और इनसे भी मजेदार बात यह है कि ये जो चाहत है ना, अक्सर कई लोगों की एक सी होती है। जी हाँ, चाहतों की पूरी लिस्ट के साथ पेश है अगला गीत, गालो भाषा में झुमकेन रालिन की आवाज में।

श्रोता कापांग सोसिया द्वारा गाए इसी नोक्ते गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ज़। नमस्कार।

0: रोमांचित संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

थोड़ी नादानी, थोड़ा ड्रामा और बहुत सारे ख्वाब होते हैं। ये टीनेज के दिन भी ना दोस्त, मुश्किल सवालों के सबसे खूबसूरत जवाब होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक और हिंदी गाना।

बातें पुरानी हो, थोड़ी धीमी सी धुन हो, आसमान का साथ हो और खिड़की से चमकता चांद हो, जिंदगी की दौड़ से दूर जब सुकून से बैठे थे हम, तो लगता है जैसे हर गहरी शाम में कोई हसीन राज हो। इसी के साथ चलिए सुनते हैं आज का आखिरी हिंदी गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ हिंदी गाने और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो साथी फ्लोरेंस शर्मा आपसे विदा लेती हूँ ये वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ। धन्यवाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz
2: तेरे दिल का मेरे दिल से
3: तो ज्ञान एवं मनोरंजन से भरा कार्यक्रम युवा वाणी को सुनने के बाद अब वक्त हो चला है आपको लिए चलने का आज के सफर के इस आखिरी पड़ाव पर और ये सेगमेंट भूले बिसरे गीत जो आप सभी के बहुत चाहते कार्यक्रम है और मैं हूं आज आपकी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी। दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़ते, बरसों बाद भी जब वे कानों में पड़ते हैं तो यादों की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। पुरानी रेडियो की मधुर धुने, ग्रामोफोन की खनक, काले सफेद पर्दे की मासूमियत और दिल को छू लेने वाले शब्द, ये सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो उठता है। इन्हीं अमर धुनों और सुनहरी यादों को संजोए हमारा यह कार्यक्रम हर बार आपके लिए लेकर आता है हिंदी सिनेमा के अनमोल खजाने। दोस्तों आज का अंक यानी कि आज का जो एपिसोड है वो काफी खास है, बेहद खास है। अनमोल रत्न श्रृंखला के अंतर्गत आज हम सुनेंगे भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज में सजे ऐसे गीत जिन्होंने भारतीय सिनेमा संगीत को अमर बना दिया। इन गीतों के साथ हम जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां फिल्म संगीतकार और गीतकार के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं यादों और सुरों का यह खूबसूरत सफर भूले बिसरे गीत।

तो दोस्तों सबसे पहले सुनिए वर्ष 1959 की फिल्म रफ मैरिज लव मैरिज का यह सदाबहार गीत। गीत के संगीतकार है शंकर जयकिशन और बोल है शैलेंद्र जी के, और अपनी सुरीली आवाज से इसे अमर बना दिया है लता मंगेशकर ने। काहे झूम झूम रात ये सुहानी।

दोस्तों इससे सुरीली शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। शंकर जय किशन की मधुर धुने और शैलेंद्र के सरल लेकिन गहरे शब्द जब लता जी की आवाज से मिलते हैं तो ऐसा जादू पैदा होता है जो दशकों बाद भी उतना ही ताजा महसूस होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अब सुनिए 1963 की फिल्म सेहरा का यह लोकप्रिय गीत। संगीत है रामलाल का और बोल लिखे है हसरत जयपुरी ने। पंख होते तो

दोस्तों ये गीत विरह और इंतजार की भावना को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है और लता जी की आवाज में दर्द भी संगीत बन जाता है। अब सुनते हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म गूंज उठी शहनाई जो कि 1959 में आई थी और इस फिल्म का यह अमर गीत। संगीतकार है वसंत देसाई और गीत के बोल लिखे हैं भरत व्यास जी ने।

संगीत और शब्दों का ऐसा सुंदर संगम बहुत कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि यह गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद बना हुआ है। अब सुनिए वर्ष 1957 की फिल्म भाभी का मधुर गीत। संगीत दिया है चित्रगुप्त ने और बोल है राजेंद्र कृष्ण के। करे करे बद्रा।

श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे हैं भूले बिसरे गीत आर जे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। सी रामचंद्रन की धुनें और लता जी की आवाज, जब यह जोड़ी हिंदी फिल्म संगीत की सबसे सफल जोड़ियों में से एक रही है। दोस्तों, आगे सुनिए फिल्म कोहिनूर 1960 का यह मधुर नगमा। संगीत दिया है नौशाद साहब ने और बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने। दिल में बाजी प्यार की शहनाइयां।

दोस्तों नौशाद साहब भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय फिल्म संगीत में पिरोने के लिए जाने जाते हैं और यह गीत उसका एक खूबसूरत उदाहरण है। भूले बिसरे गीतों के सफर में आइए चलिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। अब सुनते हैं 1956 की फिल्म भाई भाई का प्यारा गीत। संगीतकार है मदन मोहन और गीतकार है राजेंद्र कृष्ण।

मदन मदन मोहन की धुनों में हमेशा एक अलग ही मिठास रही है और लता जी ने उन्हें अपनी आवाज से अमर बना दिया है। श्रोता दोस्तों, आइए चलिए भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में हम लेते हैं आखिरी गीत। अब बारी है फिल्म अनारी 1959 के इस मन भावन गीत की। संगीत है शंकर जयकिशन का और बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

दोस्तों इसी खूबसूरत गीत के साथ ही आकाशवाणी के ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज की आज की तीसरी प्रसारण सभा यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि आज के पूरे प्रसारण में प्रस्तुत समाचार, ज्ञानवर्धक जानकारियां, प्रेरणादायक विचार और मधुर संगीत ने आपके इस शाम को और भी खुशनुमा और यादगार बनाया होगा। आपका स्नेह, आपका विश्वास और आपका निरंतर साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसी विश्वास के साथ हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं मनोरंजन, जानकारी, संस्कृति और संगीत का सुंदर संगम। अब मुझे यानी आरजू नूरी और आज की इस तीसरी प्रसारण सभा के प्रसारण अधिकारी गैर अते तथा तकनीकी अभियंता ताना आदुम को इजाजत दीजिए। विदा लेने से पहले आपको यह भी बता दें कि आकाशवाणी के दिल्ली के एफएम गोल्ड द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के साथ आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए इसी शुभकामना के साथ कि आपका हर दिन खुशियों से भरा रहे, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपको बता दूं कि कल हम फिर मिलेंगे 5:48 पर आप सभी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, ख्याल रखें, शुभरात्रि, जय हिंद।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार
2: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
3: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या Tier 2 cities पर आधारित है या Tier 3 cities पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा आप नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे इस तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। कि बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 cities में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
2: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
0: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा जो बड़े ब्रांड बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे छोटे शहर वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं महानगरों में नहीं जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पे जो लोग एक तरीके से अपने उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरह की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरह की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेंड करने तक मार्केटिंग के तक वो इस स्कीम की खास जो खूबी है और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शंस इसमें हुए हैं तो ये अपने आप में या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है। और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों की थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है। तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर है वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग इस तरीके के। उदाहरण जैसे दो उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनकी जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में। जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं
4: जी।
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो GDP का करीब 7% 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
2: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि PMFME योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया, और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
3: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2-3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है, और हम जो है मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा अरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह है जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ, वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं, और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो, आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड

0: यूनिवर्सिटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहाँ मिलेट्स होते हैं। तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं, उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है,
1: जी
0: लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है मुझे लगता है।
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निपटम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए, वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं, क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है, और इसको क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, और उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये अभी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में, और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही है। आपको क्या लगता है जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
0: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती, हमारे नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते जाते हैं, तो जो पुरानी जो

0: रही है, उनके उस ज्ञान को। जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती है आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मान, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मैं जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसने उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEM के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप चौगुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहा है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस है, उनको गांव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सके, उसको जब आप इस PM FME से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। सिर्फ मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बना देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए, एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर अब ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़े इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो जैसे

0: उपासनी जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया, उनको एक मेंबर बनाकर ठीक किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं। जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के

0: नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
1: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
2: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स वर्ग में सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को और लक्ष्य सेन ने योशी तनाका को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Vikasit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Vikasit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youths. Mr. Rijiju's remarks came as both Houses of Parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues including the NET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defense Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the center is deeply sensitive to the sentiments

0: ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें व्यापार, शुल्क, ऊर्जा, रक्षा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से भी मुलाकात की। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोनोवाल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने बंदरगाह विकास, सीधे जहाजरानी मार्गों की स्थापना और नाविकों के कल्याण सहित समुद्री क्षेत्र में साझा शक्तियों का लाभ उठाने के तरीकों पर चर्चा की। अमरीका ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा के बाद अमरीका ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन को खतरे में डालने की निंदा की है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के खिलाफ हूती विद्रोही समूहों की नौसैनिक नाकाबंदी के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उम्मीद व्यक्त की कि स्थिति में सुधार हो सकता है। फिलीपींस में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि लाल सागर से होकर जहाजों के आवागमन को प्रतिबंधित करने वाली कोई भी चीज उसी कारण से समस्याग्रस्त होगी जिस कारण से होर्मुज जलडमरू मध्य समस्याग्रस्त है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। हूती ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक बंदी की घोषणा करके एक नया मोर्चा खोल दिया है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार का प्रवाह खतरे में पड़ गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव फिलीपींस में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के बहुपक्षीय सम्मेलन में कल अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भेंट करेंगे। श्री लावरोव ने बताया कि उन्होंने कल मनीला में श्री रूबियो से संक्षिप्त मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि रूस अब भी मानता है कि अमरीका पिछले वर्ष अगस्त में एंकोरेज में हुए रूसी अमरीकी शिखर सम्मेलन में व्यक्त किए गए प्रस्तावों से पीछे नहीं हटा है। इस बीच अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने बताया कि रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। इसके जवाब में अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राज्य की यात्रा के दौरान आज स्कोप्जे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नवीनतम प्रकोप में 2,473 मामले दर्ज किए गए हैं और 999 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि इस समय 737 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। 15 मई को घोषित ये प्रकोप पिछले अधिकांश इबोला प्रकोपों से अलग है। इसके लिए जिम्मेदार बुंडी बुग्यो वायरस का कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। घाना में कल अफ्रीका स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के महानिदेशक जीन कासेवा ने प्रकोप को धीमा करने के लिए गहन प्रयास

0: का आह्वान किया। पश्चिमी नेपाल में आज सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र सुदूर पश्चिम प्रांत के बाझंग जिले के कोटदेवाल के आसपास था, जो काठमांडू से लगभग 900 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भूकंप के झटके पड़ोसी जिलों बाजुरा और दारचूला में भी महसूस किए गए। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुडा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी, जबकि लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराया। भारत के युवा स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्क्वाश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में सीधे गेम में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में हांगकांग की पुई यिन चोले लो को 11-3, 11-1, 11-3 से हराया। अब उनका सामना मलेशिया की 13-16 सीड डोएस ये सैनली से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में सीड आर्यवीर दीवान ने भी शानदार खेल दिखाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दोपहर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित बैठक में स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका ने यमन के हूती समूह द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ की गई नौसैनिक नाकाबंदी के लिए ईरान को दोषी ठहराया। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव कल फिलीपींस में आसियान सम्मेलन के दौरान अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific. Hold meeting at Manila in Philippines. US blames Iran for naval blockade against Saudi Arabia in Red Sea by Yemen's Houthi group. Russian foreign minister Sergei Lavrov to meet with US Secretary of State Marco Rubio tomorrow on sidelines of ASEAN in Philippines. And in China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today participated in Quad Foreign Ministers meeting at Manila in Philippines. In a joint statement, India, Japan, Australia and United States reaffirmed the commitment to strengthen a free and open Indo-Pacific and their unwavering support for ASEAN unity and centrality. During the meeting, they focused on regional challenges and opportunities to support the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Key discussion areas included maritime and transnational security, economic prosperity, critical and emerging technologies, and emergency response. On the sidelines of the meeting, Dr. S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio. The minister said that the meeting focused on areas which are priority for the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership, including trade, tariffs, energy, defense, security, critical minerals and artificial intelligence. Dr. Jaishankar also said that they exchanged quick perspectives on regional, global and multilateral issues of mutual interest. External Affairs Minister also met his